0: Tesco and Aubrey starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
1: Hello, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
2: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
1: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
2: वो पता नहीं।
0: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, पावर्ड बाय रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन। विद स्मार्ट रीच AI, रीच लोकल कस्टमर्स, इवन कंपेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो, डिजिटल, स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो। मेजर कॉल्स, बुकिंग्स, रिडेम्पशंस एंड एक्चुअल विजिट्स।
1: अब हुई ना स्मार्ट मार्केटिंग।
0: विजिट smartreachai.us। स्मार्ट रीच AI, टर्न अटेंशन इनटू कस्टमर्स।
3: स्मार्ट रीच AI, अ पैन एशिया नेटवर्क प्रोडक्ट।
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
0: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
6: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
5: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
6: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
7: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
0: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
7: Barista House, richness of biryani bliss.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
14: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
15: Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Kapel. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

भाई हम भी आप ही के हैं, आप सुन रहे हैं फनेशर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। आज हमने बहुत सारी बातें की ग्रीन फ्लैग्स वर्सेस रेड फ्लैग के बारे में और बहुत सारे कॉल्स आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबकी नो लाइफ में अच्छे अच्छे पार्टनर्स हैं, बहुत सारे ग्रीन फ्लैग्स लोगों ने मैंशन किए, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन अब थोड़ा बात करते हैं रेड फ्लैग्स के बारे में और मैं आपको कुछ ना रेड फ्लैग्स के सिम्टम्स बताने वाली हूँ कि आप कैसे चेक करें, कैसे एनालाइज करें कि क्या होता है रेड फ्लैग, क्या गलत है आपके रिलेशनशिप में, क्या नहीं होना चाहिए। तो जो पहला सिम्टम है वो है कि बहुत ज्यादा अगर आपका पार्टनर जो है आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि बार बार पूछना कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, लोकेशन भेजो, फोटो भेजो, फोन दिखाओ, तो ये ना थोड़ा कंट्रोलिंग जो है मॉनिटरिंग वो थोड़ा गलत हो जाता है। कंसर्न सही बात है, अच्छा होना चाहिए, जैसे कि घर पहुंच के टेक्स्ट कर लेना, कुछ हो तो मुझे बताना, दैट इज क्यूट, दैट्स नाइस। और जो दूसरा सिम्टम है वो है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो सामने वाले को भी ब्लेम कर दिया कि यार तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें मुझे प्रोवोक किया है, तुम ऐसा ना करता या नहीं करती तो मैं ऐसा नहीं करता या नहीं करती, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब साथ में प्रॉब्लम आई है तो साथ में हैंडल करना चाहिए विदाउट ब्लेमिंग ईच अदर। और जो थर्ड सिम्टम है वो ये है कि कॉन्स्टेंटली जो है बाउंड्रीज को डिसरेस्पेक्ट करना, अगर सामने वाला पर्सन कह रहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज डू नॉट फोर्स हिम और हर, जैसे कि हमने वो फेमस डायलॉग में सुना है कि नो इज नॉट अ वर्ड इट्स अ सेंटेंस, तो डू रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज। और जो फोर्थ हमारा सिम्टम है आज का वो है कि कॉन्स्टेंट कंपेरिजन, कि यू नो उसका वो अच्छा है, वाई डोंट यू डू दिस, तुम ऐसा करोगे ना उसके जैसे बनोगे या बनोगे तो ज्यादा अच्छा लगोगे या लगोगी, दैट्स नॉट राइट। वेन वी लव समवन, वेन वी वॉन्ट टू बी विद समवन, तो हम वो जैसे हैं हमें उन्हें वैसे ही पसंद करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका?

यार चाहते तो हम सब है कि हम ऐसे मस्त से रहें, कलंदर मस्त बन के रहें, लेकिन ऐसा सारी सिचुएशंस में पॉसिबल कहाँ हो पाता है, स्पेशली अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए हमारी फैमिली या फिर हमारे जान पहचान के लोगों में। लेकिन एक पर्सन है, एक पूरी टीम है जो आपकी हेल्प करेगी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है कार या ट्रक का, या फिर कोई स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट होता है। तो आप ना अगर अपनी जो है मस्त कलंदर वाले स्पिरिट भूल गए हैं, तो ये आपके सारा स्ट्रेस लेने को तैयार हैं। जो भी इंश्योरेंस वगैरह होगा ये देख लेंगे और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको तब तक इन्हें पे नहीं करना जब तक कि आप केस जीत ना जाते। वो जरूर इंश्योर करेंगे कि आपका जो है कॉम्पनसेशन, ड्यू कॉम्पनसेशन है वो आपको मिले। दिस इज ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम, अटॉर्नी ओमर ख्वाजा, वो आपको मिले। दिस इज ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम, अटॉर्नी ओमर ख्वाजा, आई वुड से। और आई थिंक यही है बेस्ट पार्ट यार, कि अगर ये सब टेंशन वगैरह हो रही है तो आप अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करें और ओमर ख्वाजा और उनकी टीम जो है आपके इंश्योरेंस की सारी हेडेक और सारा ये जो चक्कर होता है किसी भी एक्सीडेंट को लेके, वो सब कोई और हैंडल कर ले, विच इज ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम। अगर आपको इनसे फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज attorneyomer.com।

जी, हम भी अपने गिव अवे विनर का स्वागत जो है अनाउंसमेंट ऐसे ही नगाड़ा बजाते हुए करेंगे और गिव अवे राउंड आ चुका है। हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। और फन पिज्जा किचन हम सबका फेवरेट है, वी ऑल नो दैट, और फेवरेट हो भी क्यों ना भाई। इनके जो मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा है वो फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा है। आप यहाँ पे अगर जाए तो ट्राई करें यहाँ का फिएस्टा वेजी, फेरी पोलो लोको, सी फूड पैक्ड सेनोर कैमरोन, और भी बहुत सारे डिशेस हैं जो आपको पसंद आएंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको ये सब विद अ गिफ्ट कार्ड मिल जाए तो क्या ही बात। मैं आपसे जो सवाल पूछने वाली हूँ आपको उसका जवाब देना है, और ये आज का सवाल स्पेशल है क्योंकि अर्चना पूरन सिंह जी का, जो हमारी लाफ्टर क्वीन है, उनका बर्थडे है, तो हमने सोचा कि आज का गिव अवे भी उनके अराउंड रखते हैं। सवाल ये है कि आपको बताना है कि उन्होंने जो कुछ कुछ होता है मूवी में परफॉर्म किया था, जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर का नाम आपको मुझे बताना है। आपको मुझे कॉल करना है एट 972-235-5555, अर्चना पूरन सिंह जी के कैरेक्टर का नाम, बस छोटा सा।

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। अभी अभी हमने अपना गिव अवे राउंड क्लोज किया है। हमने आज जो है आपसे क्वेश्चन पूछा था अराउंड अर्चना पूरन सिंह, क्योंकि उनका बर्थडे है आज, और हमने पूछा था कि कुछ कुछ होता है जो मूवी है उसमें उनके कैरेक्टर का नाम क्या है। तो वो जो कैरेक्टर है उनका नाम था मिसेस ब्रिगेंजा, और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। बहुत फटाफट मुझे बहुत सारे कॉल्स आए और आज के जो लकी विनर हैं वो है स्वप्निल। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वप्निल, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का डिस्काउंट। आई होप यू विल गो एंड एंजॉय द पिज्जा, वो भी विद $10 ऐसे ऑफ हो जाए तो और मजा आता है यार। और एक बहुत ही प्यारी बच्ची ने मुझे कॉल किया था, कृषा, उनसे बात करके मुझे बहुत मजा आया। और जो नेक्स्ट सॉन्ग है ना, मैं उनको डेडिकेट करती हूँ। आई होप यू लाइक इट कृषा।

यार ये दिल तो बहुत प्यारा सा और नादान सा होता है, लेकिन थोड़ा सा इस दिल को केयरफुल रहने की जरूरत है। और हम बात कर रहे हैं रेड फ्लैग्स के बारे में, जो हमारी फ्रेंडशिप में भी कभी कभी देखने को मिलते हैं हमारे दोस्तों के बीच। तो उससे हमारे दिल को और हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं रेड फ्लैग्स इन फ्रेंडशिप की बात करूं, तो पहला एक अगर आप सोचे तो, अगर बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं वो तभी आपको कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे या फिर आपके घर आएंगे अगर आप उनको आपसे कुछ चाहिए होता है, जैसे कि जॉब रेफरल चाहिए। तो अरे यार, हमारी दोस्ती याद है कितनी पुरानी है, हम तो कितने अच्छे फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या फिर यार थोड़ा एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे यार, मतलब कोई तो चाहिए जो यू नो फ्री में ड्रॉप वगैरह कर दे। या फिर दूसरा फ्रेंड जो कि आपकी खुशी में खुश नहीं हो पा रहा है, अगर आपने उसको बताया कि गाइस मेरे को जॉब मिल गई है, नई जॉब मिल गई है, तो सामने से जवाब आया सैलरी कितनी है, मतलब इंस्टेंट मोमेंट ऑफ द जेलिसी आपको फील होगी सामने से। या फिर अगर आपने एक नई कार ले ली है तो फिर पूछेंगे कि ईएमआई पे लिया क्या। तो ऐसे दोस्तों से भी दूर रहना है, ये सारे रेड फ्लैग्स हैं इन फ्रेंडशिप। लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रीन फ्लैग्स भी हैं जो हमारे आसपास हमारे प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं, जो कि हम पे यू नो रेगुलरली हमसे पूछते रहते हैं कि सब ठीक है ना, बिना रीज़न कॉल किया, बिना रीज़न यार बहुत दिन हो गया यार, लेट्स मीट। कोई रीज़न नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, फ्रेंडशिप तो असली वाली फ्रेंडशिप वही है जहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है।

और इसके साथ ये जो हमारा आज का सेगमेंट था रेड फ्लैग्स वर्सेस ग्रीन फ्लैग्स, उसको आज हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। लेकिन अभी आपके साथ मैं बनी हूँ अगले एक घंटे तक, तो बहुत सारी बातें बाकी है, कहीं जाइएगा मत। और जाने से पहले एक जस्ट लास्ट थॉट, आई मीन सेगमेंट खत्म करने से पहले एक लास्ट थॉट, कि हर रेड फ्लैग का मतलब ये नहीं कि सामने वाला इंसान बुरा है, और हर ग्रीन फ्लैग का मतलब ये नहीं कि सामने वाला परफेक्ट है। हम सब कॉम्प्लिकेटेड हैं, हम सब में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, लेकिन जो बुरा है उसे इम्प्रूव करना चाहिए, और कभी कभी खुद से भी पूछ लेना चाहिए कि हम सामने वाले की स्टोरी में सही तो है ना।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
2: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
3: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
4: अजी सुनते हो
5: अजी नहीं एजी सुनते हैं
6: The OG of Tax Planning AG FinTax सुनेंगे आपके फाइनेंशियल concerns, देंगे स्मार्ट solutions every Friday 9:45 AM only on Fun Asia Radio
7: Hello Weekend Lunch Emergency Helpline How may I help you
8: Hello मेरे relatives आ रहे हैं Everyone's asking lunch में क्या है
7: Fikar not We have the Perfect solution.
9: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
10: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
11: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Fun Asia
12: That garba was totally worth it We had so much fun
13: I lost so much of calories today and I'm starving but it's so late Where can we eat now?
12: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
14: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
15: Hi, this is Kunal Kaur and you're listening to Fun Asia Radio.

तौबा तौबा चैनल ना चेंज करियो, तौबा तौबा 104.9 पे बने रहियो। दिस इज वनेश्वर रेडियो और मैं हूँ आरजे सिमी। और जो ये सॉन्ग हम सुन रहे थे तौबा तौबा, इसके आज का जो मेरा स्पेशल वर्ड है ना, जिसके अराउंड मैं सॉन्ग बजाने वाली हूँ फॉर अनदर नेक्स्ट टू सॉन्ग्स, क्योंकि एक तो हमने प्ले कर दिया, वो होगा तौबा वर्ड के अराउंड। तो आई एम श्योर यू गोना लाइक इट। और आपके दिमाग में आ रहा है कोई गाना कि तौबा तौबा जब वर्ड आता है तो आपके दिमाग में, चलो तौबा तौबा छोड़ दो, तौबा ही ले लेते हैं, ठीक है, सिंगल वर्ड का रखते हैं, कि जब तौबा वर्ड आता है तो कितने सारे गाने जो है हमारे ख्याल में आते हैं। और जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो है अगेन तौबा तौबा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट म्यूजिक, थोड़ा सा ज्यादा फ्रेश, ज्यादा न्यू।

हाँ जी, आज हम सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं अभी जिसमें कि ये वर्ड यूज हुआ हो, तौबा तौबा। और ये जो लास्ट सॉन्ग था वो रिक्वेस्ट थी फ्रॉम राहुल, नाम तो सुना ही होगा। काफी अच्छी बातें हुई उनसे, हमारी बहुत सारे वो रेगुलर लिसनर रहे हैं, बहुत बार पहले भी कॉल किया है टू मी एंड टू अदर आरजेस। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जिनसे आपसे बात करके ही लगता है कि अरे यार सामने वाला कितना अच्छा इंसान है, ही इज वन ऑफ दोज। तो हमने उनके लिए जो है ये गाना बजा दिया, लेकिन मेरा तो प्लान था कि ठीक है सिर्फ 3 सॉन्ग जाएंगे और अगले सेगमेंट में जाएंगे, लेकिन इतने सारे जब कॉल्स आ रहे हैं तो हम एक और तौबा वाला एक और गाना बजा देते हैं।

मैं अक्सर आप लोगों से ये कहती हूँ कि देखिए आपके दिल में जो आ रहा है, जैसा आपको चाह रहा है अपनी जिंदगी जीने का, वैसे जीजिए और अपने दिल की सुनिए, जो मन कर रहा है वो कीजिए। लेकिन लेकिन एक पर्सन है जिनकी बात आपको डेफिनेटली सुननी चाहिए और वो है हमारे डॉक्टर्स की। अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है तो प्लीज कीजिए, और या फिर आपको बोला गया है कि वॉक किया कीजिए या मीठा कम खाइए तो प्लीज फॉलो है, मगर हमारे हिम और हर, और क्योंकि हमारे हेल्थ जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए अपने हेल्थ को ओवर एवरीथिंग। ओके, आई होप यू विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और इसमें आपकी मदद करेंगे पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है पैशन हेल्थ, अगर आपके नेटवर्क हेल्थ इंश्योरेंस नेटवर्क से बाहर है तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हर किसी को अफोर्डेबल प्राइमरी केयर जो है मिलना चाहिए। और पैशन हेल्थ ने एक प्रोग्राम निकाला है, दैट्स कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट, और ये अवेलेबल है ओनली एट $85 अ मंथ। और इसमें ना सारे तरीके की मेडिकल सर्विसेज इंक्लूडिंग है, चाहे वो प्राइमरी केयर हो, प्रिवेंटिव केयर हो, मेडिकेशन मैनेजमेंट हो, टेली हेल्थ हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इनसे डिटेल्स लेने हैं तो आप इन्हें कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं एट 214-666-6259, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज passionhealthphysicians.com। वैसे एक बात बता दूं कि ये ना प्रोग्राम कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये बेसिकली एक हेल्थ प्रोग्राम है, और यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो आप जरूर चेक कर लें।

0: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
1: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
0: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
0: सच में सब संभालेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
3: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result?
4: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
3: Miss Clicks?
5: 100 लोगों ने click भी किया.
3: Customers कितने आए?
6: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
5: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI, turn attention into customers. Smartreach AI, a Phanasia Network product.
7: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
8: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
2: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
9: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
1: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Out.

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिज़लिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: वी नीड टू टॉक.
2: अब क्या हुआ?
1: Nothing. It's not you.
2: Oh no.
1: It's the distance.
2: Distance? We live 10 minutes apart.
1: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
3: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
4: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

देखिए, मैं आपके वास्ते चांद तारे तो नहीं तोड़ के ला सकती, लेकिन गिव अवे जरूर ला सकती हूँ। वक्त हो गया है एक और गिव अवे राउंड का, और ये है फ्रॉम द डक टाइम, जो कि अपना एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं डैलस में, और उसी के अराउंड जो है उन्होंने ये गिव अवे भी ऑफर किया है हमारे लिसनर्स के लिए। ये ना प्रोफेशनल डक क्लीनिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं, और आपके घर से, आपके घरों के वेंट से इनफैक्ट सारी धूल मिट्टी यू गायब कर देंगे, और सारे क्लॉग्ड वेंट्स को क्लियर कर देंगे, एयर फ्लो को इम्प्रूव कर देंगे, और जितने भी हिडन फायर हजार्ड्स हैं उनको भी अनहिडन कर देंगे, बता देंगे कि भाई ये इसको हटा लीजिए। ठीक है, तो डक टाइम की सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो आप जीतू पटेल जी को कॉल कीजिए 972-877-2500 और अपना

अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, और अगर ये सब नहीं, एक आपको फ्री ड्राई वेंट क्लीनिंग का मौका मिल रहा है गिव अवे राउंड से, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए. एक क्वेश्चन पूछूंगी और आपको बताना है उसका सही जवाब बाय कॉलिंग मी एट 972-235-5555. तो आज का जो सवाल है वो भी एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी का बर्थडे है, चंकी पांडे का बर्थडे है, और मैं जो नेक्स्ट गिव अवे क्वेश्चन है वो भी उन्हीं के आसपास पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ना एक आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले किया था आखिरी पास्ता का. आपको बताना है कि ये कौन सी कॉमेडी फिल्म सीरीज है जिन्होंने जिसमें ये नजर आते हैं एट आखिरी पास्ता. आपको नंबर तो पता ही है 972-235-5555.

हमें अभी के गिव अवे राउंड के विनर मिल चुके हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन था वो था कि जो चंकी पांडे ने कैरेक्टर प्ले किया था आखिरी पास्ता का, वो किस कॉमेडी मूवी सीरीज का है, और बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है इसका। मैया बाय द वे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वेलकम है, जी नहीं, इसका जवाब है हाउसफुल, और हुनर ने सही जवाब दिया है। सबसे पहले तो आज का गिव अवे मिलता है हुनर को, और बाकी लोग यार आपको भी अगर डक टाइम्स की सर्विसेज चाहिए तो आप जीतू पटेल को कॉल कर लीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, क्योंकि एक अच्छा घर, अच्छी हवा, अच्छी क्लीनिंग वगैरह बहुत ज़रूरी है ताकि आप हेल्दी रहें।

देखिए, अगर आप अपने पार्टनर को बुर्ज खलीफा नहीं दिला पा रहे तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट होको में ले जाके खाना तो खिला दीजिए। वहाँ का जो स्वाद है ना वो बहुत अच्छा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लव फूड ब्रांड्स इन इंडिया और अब आ चुका है वो प्रेस्टन रोड फ्रिस्को में, काफी नजदीक। अगर आप लोग फ्रिस्को या प्लेनो में रहते हैं तो आप लोगों के तो और नजदीक है, तो जरूर जाए यहाँ पे। और यहाँ का चना पूरी, सैंडविचेस, करीज और लेजेंडरी होको कोल्ड कोको जरूर ट्राई करें। और भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स एंड कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की, अगर आपके पास वैलिड स्टूडेंट आईडी है तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। और यही 20% डिस्काउंट आपको तब भी मिलेगा अगर आप लंच पैक्स ले रहे हैं एज एन एम्प्लॉय यहाँ से, और ये अवेलेबल है मंडे थ्रू फ्राइडे ऑफिस आवर्स के दौरान। तो इसका ज़रूर, इस अपॉर्चुनिटी का जो है यूटिलाइज़ कीजिए।

मेरे जाने का वक्त अब हो गया है. दिस इज आरजे सिब्बी साइनिंग ऑफ एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो वाज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म पूरे यूएस में. और ये बहुत सारे इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं और जो आपकी अनटैप्ड पोटेंशियल है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, वेल एस्टैब्लिश, जैसा भी हो, आपको इसमें मदद मिलेगी फाइनेंशियली एजी फिनटेक्स की तरफ से. और ये काफी ट्रस्टेड है, इफिशियंट है और आपको फ्यूचर के लिए तैयार रख है. अगर आपको इनके सर्विसेज में इंटरेस्ट है, आप इनको कॉल करना चाहते हैं, तो नंबर है 4699429888, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज agfintax.com. वैसे मैं याद दिला दूं कि अभी शनिवार रात ही अभी खत्म नहीं हुई, और द बेस्ट पार्ट ऑफ वीकेंड जो होता है ना, वो संडे मॉर्निंग एंड सैटरडे इवनिंग्स ही होते हैं. तो अभी क्योंकि शनिवार रात ही बाकी है, आई होप यू विल स्टिल एंजॉय द नाइट. गुड बाय गाइस एंड गुड नाइट.

0: Asia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
5: That garba was totally worth it. We had so much fun.
6: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
5: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
7: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
8: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
9: Your Honor, 1000 logon ne ad dekha.
8: Miss Clicks?
10: 100 logon ne click bhi kiya.
8: Customers kitne aaye?
11: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
4: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Fun Asia Network product.
12: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
13: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री ब्रिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
14: हाय दिस इज रानी मुखर्जी यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो
0: Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
15: Turn it up.
0: Brought to you

0: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
1: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
2: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
3: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
2: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
3: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
1: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं.
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं.
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं.
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

ताली चलते प्यार सोनिए ताली चलते प्यार ऐसा नहीं चलते प्यार सोनिए ताली चलते प्यार।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
4: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
3: मिस क्लिक्स
5: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
3: कस्टमर्स कितने आए
6: एविडेंस फाउंड एक्चुअल कस्टमर विजिट इज लेस देन 10
7: मार्केटिंग में क्लिक्स नहीं कस्टमर्स मैटर करते हैं विद स्मार्ट रीच एआई रीच लोकल कस्टमर्स इवन कंपेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो डिजिटल स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो मेजर कॉल्स बुकिंग्स रिडेम्पशंस एंड एक्चुअल विजिट्स विजिट smartreachai.us SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a FunAsia Network product.
8: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
9: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

रस ना आया तैनू नी जो दिल दा महल बनाया सी तोड़ के मोती फुलां दे उस महल च बूटा लाया सी नी जिवें सानू छड्ड गईयां नी तूं।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
4: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
3: मिस क्लिक्स
5: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
3: कस्टमर्स कितने आए
6: एविडेंस फाउंड एक्चुअल कस्टमर विजिट इज लेस देन 10
7: मार्केटिंग में क्लिक्स नहीं कस्टमर्स मैटर करते हैं विद स्मार्ट रीच एआई रीच लोकल कस्टमर्स इवन कंपेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो डिजिटल स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो मेजर कॉल्स बुकिंग्स रिडेम्पशंस एंड एक्चुअल विजिट्स विजिट smartreachai.us SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Fun Asia Network product.
8: Hey everybody, this is Asin and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: संगीत प्रेमियों को जगजीत सिंह का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त फन एशिया रेडियो की तरफ से।
1: Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
2: Turn it up.
1: Brought to you by Club Fantasia.

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है, स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया,

जिंदगी के कई रंग, फनीशा रेडियो के संग।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनी शो 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: the Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
1: सनी आज तू मुझे देख लेगा ना तो 100 टाइम्स आई लव यू बोलेगा। बाय गॉड आई एम लुकिंग रेड हॉट।

0: फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात।
1: भाई सेठी।
2: हाँ जी मनीपा जी।
1: पहुंच गए हैं?
2: पहुंच गया मैं। अरे अरे अरे अरे पाजी, घर तो बड़ा सही है, इत्थे तो पार्टी करनी बनती है।
1: ओ पार्टी दी कसरत तेनु हाले, पार्टी कर दे है तू।
3: पाजी उस दौरे से करने के बाद एक बार भी यहाँ आए हो?
1: हो गए, बहुत साल हो गए, दादी नु मिलन आया सी एक बारी।
2: पाजी तुहाडी दादी मैनू बिल्ली वर्गी क्यों लग रही है?
1: तू लगता तू पैग लाए होया।
4: तू इधर कर, तू सो जा, आराम कर।
2: नहीं पाजी, एक ही बोतल पीती है, ज्यादा नहीं पीती है, पर दादी बिल्ली वर्गी लग रही है।
4: ओए मेरी दादी नहीं है, उसे गोरी दी दादी होनी है। ओए तू पै जा, ओए तू सो जा,
1: मेरी फ्लाइट है, तू सो जा।
2: पर दादी

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

कहा पार्टी करो कहना क्यों नहीं मानते जीने के दिन होते हैं बस चार इंसान के शर्माना और घबराना ये दोनों चीजें छोड़ दो रूल्स और डांस फ्लोर ये दोनों चीजें तोड़ दो शुभ होए बादशाह

0: स्पीकर फट जाए। स्पीकर फट जाए।
1: आपके सुहाने सफर का साथी फनीशिया रेडियो।

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts Desi.
1: नेहा, 4 साल बाद तुम्हें मेरी याद आई।
2: I need your help. Please, Ronnie.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: बोले मुझे थोड़ा आगे चल।
1: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: कहाँ गया? कहाँ रखा था?
9: सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
10: कौन सा?
9: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
10: अरे सारे तो सेम है।
9: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
10: ओह हाँ, ये तो अलग है।
11: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
12: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉपटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉपटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
11: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
13: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
11: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
13: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
14: Wait a minute! Who are you?
11: Did someone say $100 credit for pizza? If you have an Amex Platinum card, you may be eligible for a $100 credit at Fun Pizza Kitchen. Treat yourself to cheesy favorites, special flavors, and mouth-watering toppings that'll have you coming back for another slice. Just visit the Fun Pizza Kitchen Frisco location before September 30th. For eligibility and details, call the Frisco location or simply walk in. Fun Pizza Kitchen. Bring your appetite. We'll bring the flavor.
15: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gro Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gro Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
16: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
17: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

संडे गपशप के तमाम श्रोताओं का हार्दिक स्वागत. अ वार्म वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ संडे गपशप ऑन 104.9 एफएम फनीशा रेडियो. मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एक रूप, आपका स्वागत करती हूं इस खूबसूरत नए दिन पर. नया शो एंड लेकर आती हूं इसको मैं आपकी खिदमत में 972-235-5555. जी हाँ, संडे के संडे ये शो आता है 7 बजे से लेके 10 बजे तक, और इसको पेश करती हूँ मैं आपके लिए. आप ही के सॉन्ग्स होते हैं इस शो में, तो फिर डेफिनेटली बात ये बनती है कि आप मुझे जो है फ़ोन कॉल कर सकते हैं. द फोन लाइंस आर ओपन. 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. कीप द कॉल्स कमिंग इन. 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये शो आता है जिसका नाम संडे गपशप. हफ्ते में एक दिन मुलाकात होती है, 3 घंटे की मुलाकात होती है, और बहुत ही बेहतरीन मुलाकात बन जाती है बिकॉज यहाँ पर सारे जो सॉन्ग्स हैं वो आप ही की चॉइस के होते हैं. तभी तो इतना अच्छा शो बन जाता है आपकी चॉइस का. और बस आपको फ़ोन नंबर याद रखना है. कीप द कॉल्स कमिंग इन. आई एम गोना बी हियर इन द स्टूडियो अंटिल 10 o'clock. शुरू करते हैं शो इस सुंदर से गीत के साथ.

स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। 7 बजे से ये शो शुरू होता है संडे गपशप इस शो का नाम। और आप मुझे ज़रूर कॉल करके बता दीजिए कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुनेंगे। द कॉल्स हैव स्टार्टेड टू कम। थैंक यू आप सबका। आप सुबह सुबह मेरे साथ यहाँ पर इस शो में जुड़ जाते हैं एंड मुझे इस बात की बेहद खुशी होती है। मेरा आना यहाँ पर बिल्कुल सफल हो जाता है। दिस इज़ द डे, दिस इज़ द टाइम दैट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू बीइंग हियर बिकॉज आपसे बातें होती हैं, कह सकते हैं कि मुलाकात भी होती है बिकॉज वी गेट टू स्पीक ऑफ एयर ऑन एयर। जी हाँ, 3 घंटे का ये शो। कुछ एडवर्टाइजर्स, हमारे जो स्पॉन्सर्स, उनकी एडवर्टाइजमेंट्स, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आपकी चॉइस के, एंड देन जो है संडे सुबह बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। चमकता सूरज, खिलते फूल, ये बहारों का पैगाम है। आज का दिन आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, यही मेरा सलाम है।

अभिलाषा फिल्म का ये बहुत ही मीठा सा सॉन्ग लता जी की आवाज़ नंदा जी पर फिल्माया गया, और इस फिल्म में मीना कुमारी, संजय खान, नंदा रहमान जैसे सभी वेल नोन एक्टर्स, और ये फिल्म आई थी 1968 में, अभिलाषा। This show is brought to you by My Time Equity, led by CPA Sudhir Pai. My Time Equity offers personalized strategies for portfolio management, real estate, alternative investments and retirement planning. Agar aapne paison se related, investment se related या कोई फाइनेंशियल स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपको कुछ सलाह चाहिए, कुछ किसी के साथ मशवरा करना है, तो फिर माय टाइम एक्विटी के जो ओनर हैं सीपीए सुधीर पाए, सीपीए हैं और उनको बहुत जानकारी है पैसों से रिलेटेड जो है आप इन्वेस्टमेंट्स वेल कर सकते हैं, तो आप रिटायरमेंट प्लानिंग भी सीपीए सुधीर पाए के साथ डिस्कस कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 4697021272, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट करें माई टाइम एक्विटी.com। सुधीर पाई।

इतनी मेलोडियस आवाज़ लता जी की बिल्कुल एको करती हुई अनीता राज पर ये गीत फिल्माया गया। एंड संजय दत्त भी इस फिल्म में, ज़मीन आसमां फिल्म का नाम, आर डी बर्मन का म्यूज़िक, लता जी की सुंदर सुरीली आवाज़। हमारे लिसनर कहते हैं कि ये चांद जो है आजकल बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, और वेनिंग गिबिस जो फेज़ है इसका, मून का, उसमें ट्रांजिशन हुआ तभी कल रात, अगर आपने नोटिस किया हो तो, जैसे ही सनसेट हुआ वैसे ही बहुत ही अच्छा पिंक कलर का सुंदर इल्यूमिनेटेड जो है मून राइज हो रहा था विदाउट एनी डिले, बहुत ही क्विकली हो गया था। एंड इसको कहते हैं फुल मून फेज़ में जो हार्वेस्ट मून होता है, सो इट इज़ सो प्रिटी। इवन आज सुबह भी बहुत ही सुंदर लग रहा था मून, एंड क्लियरली नज़र आ रहा था, ऐसा नहीं कि छुप गया या धूप निकलने वाली है तो बादलों के पीछे सनलाइट में छुप गया, ऐसा कुछ नहीं, वो अलग से अपना साइमल्टेनियसली जो है इल्यूमिनेट कर रहा है। सो चांद की बात हो रही है, हमारे लिसनर कहते हैं ये वाला सॉन्ग सुनवा दीजिए, विच डेफिनेटली सूट्स द टाइम एंड द मोमेंट।

0: ये इतना सुंदर सॉन्ग देवानंद साहब पर फिल्माया गया और सॉन्ग तो बहुत सुंदर है ही. इस सॉन्ग को रिक्वेस्ट करने वाली बहुत ही प्यारी सी बच्ची है राजली. शी इज़ 4.5 ईयर्स ओल्ड. 7 बजे वो भी उठ जाती हैं अपने दादाजी के साथ. वो ये शो सुनती हैं और उनके दादाजी ने राजली के लिए ये सॉन्ग डेडिकेट किया, खोया खोया चांद. सो राजली, आई नो यू आर ट्यून्ड इन, आप सुन रहे हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स. तो इन्जॉय कीजिए ये शो, एंड प्लीज़ एवरीबडी कीप द कॉल्स कमिंग इन.
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
2: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
1: सच में सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
4: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189. क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
11: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
12: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
12: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
12: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
12: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
14: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
15: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
16: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
17: सर बढ़िया है, 50,000 इम्प्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स.
16: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
17: पता नहीं.
18: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं. इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, पावर्ड बाय रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
16: Ab hui na smart marketing.
18: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers.
19: Smart Reach AI, a Fun Asia Network product. Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका. थैंक यू सो मच. आप ट्यून्ड इन हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे शो के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका नाम संडे गपशप. मेरा नाम एकरूप, जी हाँ, आरजे एकरूप. मैं पेश करती हूँ आपके लिए ये शो 7 बजे से लेके 10 बजे तक, जिसमें होते हैं सॉन्ग्स आपकी चॉइस के. एंड बिकॉज अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो जो है सॉन्ग्स भी फिर ऐसे होते हैं जो थोड़े ज़्यादा मेलोडियस, ज़्यादा मीनिंगफुल, नाइस काम म्यूज़िक. वेल, बहुत काम, स्लो डाउन नहीं, लेकिन गुड म्यूज़िक जो एक्चुअली रूह को खुश कर दे. हमारे लिसनर इवान सुनना चाहते हैं एक 90s का सॉन्ग. मैं थोड़ा सा 10-20 seconds का डेफिनेटली प्ले करूँगी, बिकॉज आई लव व्हेन you call and I don't want to decline that or I don't want to postpone your song. मैंने इवान को बोला था कि मैं 9 o'clock के ब्रेक के बाद ऐसा वाला सॉन्ग जो है, ऐसे जॉनर का सॉन्ग प्ले करती हूँ 90s का. बट कोई बात नहीं, इवान अभी कार में है. एंड मैं थोड़ा सा, इवान, आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू. आई रियली अप्रिशिएट यू कॉलिंग मी दिस अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड आई डू अप्रिशिएट द लव दैट यू गाइज हैव फॉर दिस शो.

ये रोशन का म्यूजिक, राजेश रोशन का म्यूजिक फिल्म का नाम जो है करण अर्जुन, जिसको राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था. एंड इसमें इतने अच्छे अच्छे स्टार्स, स्पेशली द वन दैट शाइन्स फॉर मी इज अमरीश पुरी साहब. बहुत ही उनकी अच्छी एक्टिंग हर मूवी में, हर रोल में वो अपना अपने किरदार में बहुत ही इजीली स्मूथली ट्रांजिशन कर जाते थे. एंड ही डेफिनेटली टेक्स अवे ऑल द लाइमलाइट एंड द स्पॉटलाइट फॉर मी इन दिस सॉन्ग. इवान, आई रियली अप्रिशिएट यू कॉलिंग इन द मॉर्निंग. आई think you are probably driving to one of your classes or some important commitment that you are going to early this morning on a Sunday. So I really appreciate your time. चलिए अब हम इस सॉन्ग की जो है रिक्वेस्ट आई हुई है, बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, शर्मिला जी पर फिल्माया गया उनकी फर्स्ट मूवी का सॉन्ग.

जो है अच्छी अच्छी बातें मुझे बता रही थी, एंड देन उन्होंने कहा कि ये वाला सॉन्ग सुनवा दीजिए। पंकज उदास की आवाज़ है और उनका दिल जो है खुश हो जाएगा।

वेरी टिपिकल ओपी नैयर म्यूजिक, आशा जी की आवाज़, और ये गीत जो है फिल्माया गया शमी कपूर एंड शर्मिला जी के ऊपर, दीवाना हुआ बादल, फिल्म का नाम कश्मीर की कली। हमारी संगीता जी ने बहुत दिनों के बाद फ़ोन किया है एंड वो बस कुछ अपनी

ये फिल्म का नाम नाम जो 1986 में आई थी, फिल्म की स्टोरी थी कि जो है दुबई चले जाते हैं एंड देन वहाँ से फिर जब अपने घर की याद आती है तो ये कॉन्सर्ट में पंकज उदास साहब गा रहे हैं, इतनी आवाज़, अच्छी आवाज़, एंड सभी जो हैं थोड़े इमोशनल हो रहे हैं बिकॉज़ दे आर थिंकिंग ऑफ देयर कंट्री. चिट्ठी आई है. एवोल्यूशन ऐसा हुआ है इन द लास्ट 50 और 60 ईयर्स, अगर यूएस की बात करें, जो एनआरआईज हैं जो जब 70s में या उससे पहले भी जो आए थे, तो इन द लास्ट 50 ईयर्स और सो इतना प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. पहले जो है बहुत ही छोटी आइसोलेटेड कम्युनिटी थी, कुछ थोड़े बहुत इधर उधर इंडियंस दिख जाते थे या आते थे, एंड मोस्टली जो है प्रोफेशनल स्टडीज़ या पढ़ने हायर एजुकेशन के लिए आते थे. और अब जो है इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, अगर सिर्फ इंडियंस की ही बात करें तो अबाउट क्लोज टू 5 मिलियन जो है सिर्फ यूएस में ही है. सो इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, मेन स्ट्रीम कल्चर ही बन गया है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द देसी प्रोडक्ट्स जो कि स्पाइसेस, फूड प्रोडक्ट्स, एंड ना सिर्फ वो इंडियन स्टोर्स में मिलते हैं बल्कि अब तो कॉस्को हो गया या जो बड़े मेन स्ट्रीम HEB जैसे इन स्टोर्स में भी मिलते हैं. फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स हैज़ चेंज्ड एंड इवॉल्व टू. बैक देन प्रीपेड कार्ड्स या जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रंक कॉल्स मिलाई जाती थी और कितना लंबा वेट करना पड़ता था कि कब नंबर आएगा, कब बारी आएगी और कब बैक होम बात करेंगे, या फ़ोन नहीं तो फिर चिट्ठियाँ लिखते थे जिस पर ये गाना बना है, चिट्ठी आई है, वो एरोग्राम के जो एनवलोप्स हैं जो वो ट्राई फोल्ड एक चिट्ठी होती थी वो इंटरनेशनल भेजी जाती थी और उसको कई हफ्ते लग जाते थे, इतना स्लो एंड स्टेडी स्लो मो में चलती थी वो चिट्ठी. और जब तक कोई स्पेशली कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी होती थी तो इवेंट आने वाला है, कर भी दिया, हो भी गया और चला भी गया, एंड देन तब जाके कहीं चिट्ठी वो पहुंचती थी. और अब तो इंस्टेंटली राइट अवे जिस सेकंड बात हुई है उसी सेकंड आप उसको रिले कर दो थैंक्स टू द इंटरनेट एंड एंड एंड ऑल द अपडेटेड टेक्नोलॉजी. सो द टाइम्स हैव चेंज्ड, देर हैज़ बिन अ मल्टी फोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज़ इवॉल्व्ड एंड द कम्युनिटी हैज़ बिकम मोर एफ्लुएंट, मोर इन्फ्लुएंशियल एंड जो है मेन स्ट्रीम इंटीग्रेटेड ग्रुप में आ गई है. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस इमोशन से ये सॉन्ग गाया, जिस इमोशन से ये सॉन्ग लिखा, जिस इमोशन से इस फिल्म में पिक्चराइज किया, अब खैर वो वाले एग्जैक्ट इमोशंस तो नहीं है, चिट्ठियाँ तो नहीं आती, लेकिन जो इमोशंस, जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर ज़रूर हैं कि जब किसी की याद आती है, देश की याद आती है, लोगों की याद आती है, चीज़ों की याद आती है, तो फिर क्या इमोशंस होते हैं, दोज आर द वंस दैट वी कैन ऑल रिलेट विद. सो थैंक यू हमारे लिसनर जिन्होंने इतना अच्छा सॉन्ग जिसकी रिक्वेस्ट की. अब अगला वाला जो सॉन्ग है वो तो और भी बहुत ही अच्छा है, मन्ना डे साहब की आवाज़. दिस विल टेक अस इनटू द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एट 8 o'clock.

Thank you so much for your calls. Thank you so much for staying tuned in to 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं आपकी होस्ट आरजे एकरूप आप सबका स्वागत करती हूँ. थैंक यू. जो ब्रेक है वो करीबन 5 मिनट्स या मे बी अ फ्यू सेकेंड्स लेस, और आपके फ़ोन कॉल्स ने मुझे डेफिनेटली बहुत बिजी रखा आपके टाइम के लिए. थैंक यू. और इतने अच्छे अच्छे कॉल्स हैं जिन इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं जिनके आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मैंने एक एक करके सब लाइन अप कर दिए हैं. ब्रेक के बाद अभी रिज्यूम कर रहे हैं. 8:06 इज़ द टाइम इन द स्टूडियो क्लॉक, और ये वाला सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है. फिल्म का नाम है लाल पत्थर.

दिस पार्ट ऑफ माई शो इज़ ब्रॉट टू यू बाई ओमर ख्वाजा, जो कि यहाँ पर लोकल अटॉर्नी है, वेल नोन अटॉर्नी है, और उनकी सर्विसेज और उनका एक्सपर्टीज़ बाकमाल है. अगर पर्सनल इंजरी में गॉड फॉरबिड आप थोड़े एंगेज्ड एंड एंटेंगल्ड हो गए हैं, कार एक्सीडेंट या कोई और बॉडीली इंजरी हुई है, तो आप ज़रूर ओमर ख्वाजा के साथ कनेक्शन बनाएं, अपना कॉन्टैक्ट करें उनके साथ 469-300-5046, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं attorneyomar.com. आप के जो है वो केस को फाइट करेंगे एंड आप को ओमर ख्वाजा को कुछ पे नहीं करना अनलेस आप अपना केस जो है वो आपको जिता देते हैं. सो ओमर ख्वाजा प्रोमिसेज एंड वेल आई डोंट नो इफ ही प्रोमिसेज बट ही विल डेफिनेटली फाइट फॉर योर केस व्हाइल यू फोकस ऑन हीलिंग. And he will take over the reins and fight for you. And he will try his level best. And he will win the case. And you don't have to pay him anything unless he wins. So attorneyomar.com 469-300-5046 is the phone number. attorneyomar.com is his website. एक और सॉन्ग मोटिवेशनल मैं कह सकती हूँ, और ये वाला है जो विनोद खन्ना जी पर फिल्माया गया. Another one in the voice of किशोर दा.

0: रुक जाना नहीं।
1: आज की डेट है सितंबर 27th एंड टुमारो सितंबर 28th द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वाज बोर्न ऑन सितंबर 28th। उनका जो है 28th को बर्थडे आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट लता मंगेशकर, जिन्होंने आई गेस इंडस्ट्री में अगर सिंगिंग की बात करें तो उन्होंने कंप्लीट जो है रूपरेखा दी हुई है। अभी भी इतना लेजेंडरी उनका काम। एंड अगर सिंगर की बात करते हैं तो मन में सबसे पहले जो है ध्यान लता जी का ही आता है। प्लेबैक सिंगिंग फीमेल वॉइस मींस लता जी। सो लता जी की मूवी तनुजा जी की मूवी का एक सॉन्ग है जिसके लिए लता जी को बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड मिला था। एंड आई थिंक इस अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने उसके बाद फिल्म फिर से कोई भी अवार्ड नहीं लिया। शी रिक्वेस्टेड देम टू नॉट इवन आई थिंक नॉमिनेट भी नहीं हुई थी शायद। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये वाला सॉन्ग है जिसके लिए लता जी को फिल्म फेयर की तरफ से अवार्ड मिला था। एंड कुछ रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स हैं जो लता जी की आवाज़ में है, वो भी मैं प्ले करूँगी। बट लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, थिंकिंग ऑफ लता जी, रिमिनिसिंग ऑल द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स दैट शी हैज संग एंड द एंटरटेनमेंट दैट शी हैज़ प्रोवाइडेड टू अस, द ब्यूटिफुल वॉइस दैट शी हैज़ लेंट टू सो मैनी डिफरेंट एक्ट्रेसेस, वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस, ब्यूटिफुल एक्ट्रेसेस। सो ये तनुजा जी के ऊपर फिल्माया गया। हैप्पी बर्थडे टू लता जी।

Known as the voice of the millennium, known as the queen of melody and hands down nightingale of India, Lata Ji, jinka janmdin kal, yani ki September 28th, and unka jo career जब उन्होंने शुरू किया वो इतनी छोटी यंग सी थी एंड उनका 80 इयर्स तक करियर चला अनटिल शी वॉलंटरली रिटायर्ड एंड सेड दैट आई डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर. इतना लंबा करियर और इतने बेहद खूबसूरत सॉन्ग्स उन्होंने दिए. एक सॉन्ग जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है, रेट्रो म्यूज़िक, वेल बहुत पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म का सॉन्ग है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को ना सोचें कि ब्लैक एंड वाइट है या कलर्ड है, इफ़ यू लिसन टू द म्यूज़िक एंड द वॉइस यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एन्जॉय इट. 1960 में ये फिल्म आई थी, हमारे श्रोता जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की.

पद्म भूषण से इनको नवाजा गया था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको मिला हुआ था, एंड महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सभी इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लता जी के नाम, एंड वेरी वेल डिजर्विंग, अनडाउटेडली हैंड्स डाउन दी बेस्ट प्लेबैक सिंगर दैट द इंडस्ट्री हैज सीन और वी हैव सीन इन आवर लाइफ टाइम्स. A lifetime and many more generations are going to witness because her work is so legendary. Happy birthday to Lata ji tomorrow, September 28th. ये सॉन्ग मोहम्मद रफी साहब के साथ इन्होंने गाया.

इनका नाम जब ये पैदा हुई थी तो नाम रखा गया था हेमा, लेकिन इनके फादर को लतिका जो है कैरेक्टर बहुत पसंद आया था। एक जो है प्ले हुआ था उसमें एक फीमेल कैरेक्टर लतिका, तो वहाँ से फिर इनके फादर ने इनका नाम लता रख दिया। तो लता मंगेशकर के नाम से पूरी दुनिया इनको जानती रही जानती है, और इनका जो नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में होल्ड है सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्डेड आर्टिस्ट। एंड देन अब जो है वो नाम इनकी सिस्टर आशा भोंसले का है वहाँ पर नाम, बट शी डेफिनेटली लता जी इज़ लेजेंडरी, शी इज़ आइकॉनिक, एंड इनका जो काम है इनके नाम को अमर कर गया।

वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। शो का नाम संडे गपशप, मेरा नाम एक रूप। जी हाँ, आरजे एक रूप लेकर आ रही हूँ आपके लिए ये शो जिसका नाम संडे गपशप। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये शो आता है 104.9 एफएम फनीशा रेडियो की फ्रीक्वेंसी। और जो है यहाँ का फोन नंबर 9722355555। शो मिडवे पहुँच गया है, 8:30 की ब्रेक के बाद अभी हम वापस आ रहे हैं 10 o'clock तक की शो। एंड अभी जो है स्टूडियो की क्लॉक में 8:35 हो रहे हैं। ये शो लेकर आते हैं आपके लिए एजी फिनटेक्स। टैक्स रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो या आपने सर्विसेज लेनी हो, इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड दे गेट यू प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। आप एजी फिनटेक्स के साथ कॉन्टैक्ट बनाएं 4699429888 या फिर आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं agfintechs.com। हमारी लिसनर जो कहती हैं प्रबोध चंद्र डे यानी कि मन्ना डे साहब की आवाज़ में ये वाला सॉन्ग अशोक कुमार साहब पर फिल्माया गया। फिल्म का नाम मेरी सूरत तेरी आँखें।

मन्ना डे साहब जो इतने अच्छे सिंगर थे इंडस्ट्री में, सच अ क्लासिकली ट्रेन्ड म्यूजिशियन इन प्लेबैक सिंगर, और इनके सॉन्ग्स काफ़ी मेमोरेबल. कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग्स इन्होंने गाए, अबाउट मोर देन क्लोज टू अबाउट 4,000 सॉन्ग्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस के गाए. ही वॉज़ वेरी हाईली क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर एंड

कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग्स इन्होंने गाए, अबाउट मोर देन क्लोज टू अबाउट 4,000 सॉन्ग्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस के गाए. ही वॉज वेरी हाईली क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर एंड इनके जो सॉन्ग्स हैं बड़ा स्टैंड आउट करते थे, करते हैं. बंगाली में तो इन्होंने सबसे ज़्यादा गाए, और भी लैंग्वेजेस के सॉन्ग्स इन्होंने गाए हैं. एंड ऑफकोर्स बॉलीवुड हिंदी सिनेमा में तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं इनके. जस्ट लाइक लता जी, इनको भी बहुत सारे अवार्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हुए थे, पद्मश्री, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड. सो ही इज़ ऑल्सो अ हाईली रिगार्डेड सिंगर इन द इंडस्ट्री. थैंक यू हमारी लिसनर जिन्होंने इतना अच्छा सॉन्ग जिसकी रिक्वेस्ट की. अब एक सॉन्ग है, दो सॉन्ग्स हैं जो कि चांद से रिलेटेड हैं. सो बैक टू बैक ही मैं इनको प्ले कर देती हूँ. हेमंत कुमार साहब की आवाज़ है ये पहले वाले सॉन्ग में. सो लेट्स

और जो दूसरा सॉन्ग है चांद पर ही, वो भी मैं अभी राइट अवे प्ले कर देती हूँ, लता जी की और हेमंत कुमार जी की आवाजें। फिल्म का नाम जाल। आई थिंक दिस इज अ डुएट।

ये तो वही सॉन्ग आ गया. आई डोंट नो हमारी लिसनर ने ये दो सॉन्ग्स की क्यों रिक्वेस्ट की, इवन दे आर द सेम मे बी, बट लेट्स हियर. आई डोंट नो.

टाइम हो रहा है 9 बजने वाले हैं और 9 बजे की ब्रेक के बाद जो है एक गिव अवे मैं आपके लिए प्रेजेंट करती हूँ। एंड देन आपको बस मैं अभी हेड्स अप ही देना चाह रही थी कि अपने फोन्स अपने पास रखें, बिकॉज गिव अवे जब मैं पूछूंगी तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी $10 गिफ्ट कार्ड जीतने की फन पिज्ज़ा किचन की तरफ से। बट अभी जो है अंटिल 9 मैं आपकी चॉइस के सॉन्ग्स प्ले करूंगी एंड आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। द लिस्ट ऑफ द रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स इज़ लॉन्ग, सो आई एम ट्राइंग टू प्ले देम एज दे कम, और समटाइम्स थोड़ा डिले भी हो जाता है बिकॉज आपकी रिक्वेस्ट से पहले 2-3 सॉन्ग्स ऑलरेडी लाइंड अप होते हैं। अभी जो है आज की डेट है 9/27, September 27, एंड आप सबके इतने ओवरवेलमिंग फ़ोन कॉल्स, थैंक यू सो मच आपका प्यार इस शो के लिए, थैंक यू सो मच आपका प्यार हमारे इस रेडियो स्टेशन के लिए। जस्ट बिफोर आई साइन आउट टुडे एट 10 o'clock, एंड जो भी हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू गाइज नो कि नेक्स्ट 2 weeks के लिए मैं आउट ऑफ वेल छुट्टी पे जा रही हूँ। सो जो मेरी मुलाकात है अभी आपके साथ आज के बाद होगी 18th of October को। सो जस्ट सो यू नो, क्योंकि 7 o'clock जब मैं ये शो शुरू करती हूँ तो हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो राइट अवे ट्यून्ड इन होते हैं, एंड दे एज मच एज यू आर ईगर टू लिसन टू दिस शो, आई एम प्रॉबेबली मोर ईगर टू कम हियर एंड डू माई शो हियर ऑन संडे। So just a little heads up कि next 2 Sundays मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी, आई एम गोइंग ऑन अ लिटल वेकेशन। तो मैं आपको मिलूँगी फिर October 18th जो संडे होगा 7 बजे। कमिंग बैक टू आर सॉन्ग्स, टू द रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स, एक ये वाला सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, और लता जी की जब ब्रेक पर जाने से पहले लता जी का सेगमेंट मैं कर रही थी, और रादर बन गया था लता जी का ही सेगमेंट बिकॉज कल उनका बर्थडे है, तो हमारे एक लिसनर उन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की। व्हाट अ ब्यूटिफुल आइकॉनिक एवरग्रीन सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ लता जी।

किशोरदा एंड आर डी बर्मन की जो ये कलेबोरेशन रही परिचय फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त, सॉन्ग जबरदस्त, मूवी जबरदस्त, इस फिल्म के अराउंड सब कुछ एंड सुपरहिट फिल्म परिचय। अब हम बढ़ते हैं आशा जी की आवाज़ की तरफ। हमारी लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की एंड सपोजिटली ये जो एक्ट्रेस हैं ये उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। मैं बात कर रही हूँ मुमताज़ जी की। हियर यू गो।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM.
3: Turn up the volume.
4: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
5: ये तारा वो तारा हर तारा।
6: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स or older to game।
8: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर DP है।
9: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
10: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
8: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
10: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
6: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
11: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
12: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
11: नहीं।
12: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
11: नहीं।
12: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
11: वो भी नहीं।
12: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: That garba was totally worth it. We had so much fun.
15: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
14: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
16: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba Fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
17: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
18: रेडी फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड अ फ्रेश स्टार्ट इन योर करियर? वी आर लुकिंग फॉर एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड प्रोफेशनल्स टू जॉइन आवर टीम अक्रॉस मल्टीपल पोजीशंस। इफ यू आर बिटवीन 25 एंड 40 विद एक्सपीरियंस इन मीडिया, सेल्स और रिलेटेड फील्ड्स, वीड लाइक टू हियर from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

0: TLC, Don't Go Chasing Waterfalls. और ये वाला सॉन्ग जो 90s का इतना पॉपुलर सॉन्ग हुआ था, it definitely has an underlying meaning to it, has an underlying good message to it, that stay away from risky choices, don't go chasing waterfalls. Billboard पर ये जो है सॉन्ग काफ़ी टॉप चार्ट बस्टर रहा, एंड 2013 का जो अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड्स हुए थे वहाँ पर ये परफॉर्म भी हुआ था, TLC का गाया हुआ ये सॉन्ग Waterfalls. Welcome back. You are tuned in to 104.9 FM Phanesia Radio. This is RJ Akrop welcoming you all once again. Thank you so much for staying tuned in to this show. 972-235-5555 is the number to the studio. और ये शो आता है 7 बजे से लेके 10 बजे तक, तो इसका अभी ये मतलब है कि about 50 मिनट्स रफली बचे हुए हैं, 9:09 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में. 9 hours and 9 minutes होने वाले हैं स्टूडियो की घड़ी में. 10 o'clock तक ये शो आता है, लेकर आती हूँ इसको मैं एक रूप. जी हाँ, थैंक यू वेरी मच. आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, थैंक यू आपके टाइम के लिए और इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स जिनकी आपने रिक्वेस्ट की हुई है. 9 बजे के ब्रेक के बाद गिव अवे का टाइम होता है, तो मैं आपको क्विकली गिव अवे के बारे में बता देती हूँ. वैसे मैंने आपको हेड्स अप दिया था 9 o'clock की ब्रेक से पहले, ताकि आप जो है अपना फ़ोन अपने पास रखें और जब आपको ये मैं गिव अवे के लिए क्वेश्चन पूछूं, एंड इफ़ यू नो द आंसर सो दैट यू आर एबल टू कॉल मी हियर एट द स्टूडियो नंबर 972-235-5555 एंड गिव मी द राइट आंसर ऑन एयर. फन पिज्ज़ा किचन की तरफ से है ये वाला गिव अवे. $10 का गिफ्ट कार्ड आपके नाम हो सकता है अगर आप इस गिव अवे के का जो जवाब है मुझे बता देंगे. लेट मी फर्स्टली टेल यू अबाउट द फन पिज्जा किचन एंड द मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड एंड लॉन्च्ड. दे जस्ट अर्न पिज्जाज, दे आर फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा. From the fresh fiesta veggie to the fiery pollo loco, the seafood-packed Señor Camarón, every bite is bold, exciting, and it is made to impress you. Head over to Fun Pizza Kitchen and taste the new obsession for yourself. ये जो gift card है ये आपको Frisco की location के लिए मिलेगा. और आप फ्रिस्को लोकेशन जो कि यहाँ से पास ही है, FP के फन पिज़्ज़ा किचन स्टूडियो के पास है, तो आप उस वाली फ्रिस्को की लोकेशन में जा सकते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले अ क्लिप. यू आर गोइंग टू हियर टू वॉइसेस, टू मेल वॉइसेस. आपको मुझे उन मेल वॉइसेस का नाम बताना है एंड हु आर दे टॉकिंग अबाउट. मुझे आपको उस एक्ट्रेस का नाम भी बताना है. सो द टू मेल एक्टर्स एंड दे आर टॉकिंग अबाउट एन एक्ट्रेस, उनको रेफर किया है इस मूवी में. शी इज सिटिंग, शी इज इन द सीन, यू जस्ट डोंट गेट टू हियर हर. बट इन तीन एक्टर्स के नाम मुझे बता दीजिए. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. लिसन टू द क्लिप carefully and then it is about a minute long scene hai ek movie ka, to aap mujhe in tino actors ke naam bata dijiye. You're going to hear the two male voices and they are talking about an actress, unka naam aur do male voices ka naam. Added on, agar aap mujhe movie ka naam bhi bata denge to wo bhi acha hoga, and you are going to win a $10 gift card. 972-235-5555, here you go.
1: Ab ye sab kuch badha chadha ke likhna hai na, बड़ा चढ़ा के. रियली सीरियसली, जैसे आजकल तुम लोग विमेन्स इश्यूज पे लिख रहे हो, आई मीन तुम्हारी माने तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ हर औरत हर वक्त हर जगह अनसेफ है.
2: हर सर्वे तो यही कहता है, लेकिन बात सिर्फ सेफ्टी की नहीं है, मतलब इक्वल राइट्स की है, बराबरी की है.
1: प्रिसाइसली, तो बदलाव आ रहा है स्लोली बट श्योरली, थिंग्स आर चेंजिंग. मेरी फैमिली को ही ले लो, मेरे डैड के जनरेशन तक किसी औरत ने काम नहीं किया, नेवर. फिर मैंने आयशा को अलाउ किया बिजनेस चलाने.
2: तुमने आयशा को अलाउ किया?
1: Yes.
2: और उसे तुम्हारे परमिशन की जरूरत क्यों?
1: You know what I mean?
2: No, I don't know what you mean. No, जब तुम किसी को अलाउ करते हो, तुम अपने आप को एक अथॉरिटी, एक कंट्रोल की पोजीशन में डालते हो, और ये बराबरी नहीं हुई. But thank you. जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था वो तुमने साबित कर लिया. Cheers.
0: So, ये आपको मुझे बताना है मेल जो वॉइसेस हैं ये किन किन की हैं. देयर इज दिस डायलॉग गोइंग ऑन बिटवीन टू एक्टर्स. मैं फिर से प्ले कर देती हूँ अगर आपको अगेन यू नीड अ लिटिल बिट मोर ऑफ टाइम. तो ये दोनों एक्टर्स के नाम बता दीजिए. हु आर दे टॉकिंग अबाउट उनके उनका नाम बता दीजिए. एंड एडेड ऑन नॉट पार्ट ऑफ द विनिंग क्वेश्चन. अगर आपको ऑब्वियसली अगर ये तीन एक्टर्स के नाम पता हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आपको मूवी का नाम भी पता ही होगा. सो हियर यू गो. आई एम गोइंग टू प्ले इट वन मोर टाइम एंड देन आई विल गिव यू सम टाइम टू थिंक अबाउट इट. हियर यू गो.
2: ये सब कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखना है ना.
0: आई एम गोना रिवाइंड इट अ लिटिल बिट मोर. हियर यू गो.
2: चार्ल्स का तो काम ही सब कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखना है ना. बढ़ा चढ़ा के. रियली? सीरियसली? जैसे आजकल तुम लोग विमेन्स इश्यूज पे लिख रहे हो. आई मीन तुम्हारी माने तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ हर औरत हर वक्त हर जगह अनसेफ है. हर सर्वे तो यही कहता है. लेकिन बात सिर्फ सेफ्टी की नहीं है, मतलब इक्वल राइट्स की है, बराबरी की है. प्रिसाइसली. तो बदलाव आ रहा है. स्लोली बट श्योरली थिंग्स आर चेंजिंग. मेरी फैमिली को ही ले लो. मेरे डैड के जनरेशन तक किसी औरत ने काम नहीं किया. नेवर. फिर मैंने आयशा को अलाउ किया बिजनेस चलाने.
3: तुमने आयशा को अलाउ किया?
2: Yes.
3: और उसे तुम्हारे परमिशन की जरूरत क्यों
2: है? You know what I mean?
3: No, I don't know what you mean. No, जब तुम किसी को अलाउ करते हो तुम अपने आप को एक अथॉरिटी एक कंट्रोल की पोजीशन में डालते हो. और ये बराबरी नहीं हुई. But thank you. You know, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था वो तुमने साबित कर लिया.
2: Cheers.
0: ये मूवी का सीन है. एंड लेट्स हियर कि हमारे साथ कौन से कॉलर जुड़े हुए हैं. गुड मॉर्निंग. यू आर लाइव ऑन एयर. आप यस अपना नाम बताइए. आर यू कॉलिंग? यस. कैन यू हियर मी?
4: हेलो.
0: वेल मुझे तो उनकी पूरी आवाज आ रही है.
4: हेलो.
0: यस. आप पहले अपना नाम बता दीजिए. आर यू कॉलिंग फॉर द गिव अवे? यस.
4: ज्योति. ज्योति.
0: ओके. ज्योति. ऑलराइट. टेल अस आप ये दो एक्टर्स को पहचान रही हैं?
4: बिल्कुल. इट्स फरहान अख्तर एंड राहुल बोस.
0: ओके वंडरफुल. एंड कौन सी मूवी है ये?
4: दिल धड़कने दो.
0: एंड हु इज द पर्सन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट आल्सो इन देयर डायलॉग्स?
4: आई थिंक प्रियंका चोपड़ा.
0: हाँ आई थिंक आपने. यस यू हैव द राइट आंसर. यस आप थोड़े से डाउटफुल थे बट आई एम. यस यू आर राइट. तो टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस फिल्म नाउ दैट आपने सही जवाब तो दे ही दिया है. तो
4: सॉन्ग के बारे में?
0: मूवी के बारे में. व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस मूवी?
4: मूवी में लाइक इट वॉज
0: दिल धड़कने दो. राइट. यू वॉच दिस?
4: या या द सॉन्ग. यस द सॉन्ग्स वर रियली नाइस एंड या एंड द क्रूज एंड द कॉन्सेप्ट वाज नाइस डन बाय जोया अख्तर.
0: जोया अख्तर. हां जी.
4: इट
0: वाज या या इट वाज अ नाइस मूवी. हां. और सभी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. Everybody did their part very well. So, ठीक है. So, आप अपना पूरा नाम, if you don't mind, just saying it on air, and then I can take you off air to tell you how you can claim this giveaway.
4: Sure. My full name is Jyoti Singh.
0: Jyoti Singh. ठीक है. तो आप यहीं रहिए. I'm gonna take you off air. And हम इस movie का गाना तो नहीं है मेरे पास अभी जो requested songs हैं. लेकिन एक थोड़ा पुराना सा गाना है जो मैं इस लगा देती हूँ हमारी लिसनर जिन्होंने रिक्वेस्ट की. एंड देन इफ आप कोई इस मूवी का गाना सुनना चाहती हैं और शुड आई आस्क जस्ट ऑल ऑफ आवर लिसनर्स इफ दे वांट टू हियर अ सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी.
4: या एनी सॉन्ग विल बी
0: ओके. ऑलराइट. सो ज्योति लेट मी टेक यू ऑफ हियर. ओके जस्ट स्टे हियर. ऑलराइट. सो ज्योति हमारी विनर हैं आज के गिव अवे की. सो हियर ये सॉन्ग मैं प्ले करती हूँ. रेट्रो सॉन्ग है लता जी की आवाज में. व्हाइल यू गाइस एंजॉय दिस व्हेन आई कम बैक आई विल प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम दिल धड़कने दो.

0: ज्योति सिंह रही आज की विनर. मैंने वो जो क्लिप सुनाया था आपको, लगाया था, वो आपने सुना था, वो फिल्म दिल धड़कने दो का था. एंड द मूवी वाज शॉट ऑन अ क्रूज. बहुत ही ब्यूटीफुल उनकी जो है शूटिंग लोकेशंस थे. अच्छी फिल्म बनाई थी ज़ोया अख्तर ने, जो कि जावेद अख्तर की बेटी हैं. एंड ये जो डायलॉग्स आप सुन रहे थे बिटवीन द टू एक्टर्स राहुल बोस एंड फरहान अख्तर, जो कि ज़ोया के ब्रदर हैं एंड जावेद साहब के बेटे हैं. सो टैलेंटेड फैमिली, और बेटा बेटी दोनों ही बहुत टैलेंटेड हैं. फरहान अख्तर की बहुत अच्छी एक्टिंग थी इस फिल्म में. जिस तरह का उनको रोल दिया था, सनी था उनका नाम इस मूवी में. एंड आयशा, जिनकी ये दोनों एक्टर्स बात कर रहे थे, प्रियंका चोपड़ा जो कि राहुल बोस की वाइफ का रोल प्ले करती हैं. एंड ये फिल्म की स्टोरी, लाइक आई सेड, इज़ अराउंड अ फैमिली जिनके थोड़े ड्रॉबैक्स हैं, तो अच्छी बातें हैं, कुछ थोड़े ड्रॉबैक्स भी दिखाए हैं, लाइक एनी अदर फैमिली, एनी अदर नॉर्मल फैमिली. और इसमें रणवीर सिंह जो हैं प्रियंका चोपड़ा के ब्रदर का रोल प्ले करते हैं. अनिल कपूर एंड शेफाली शाह के बच्चे हैं ये दोनों. अच्छी मूवी है. और ये वाला जो एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, जो कि एक्चुअली मेरा फेवरेट सॉन्ग है इस फिल्म का, लेट मी जस्ट टेक दिस पर्सन ऑन एयर. ये काफ़ी देर से मुझे इनका फ़ोन आ रहा है, बट आई डू आई एक्चुअली missed the phone call. Good morning, you're live on air. Would you like to come on air? Because aapka phone, maine socha on air le lun. Is that okay, or would you want to talk to me off air?
1: Off air should be fine. Just wanted to request a song.
0: Okay. Yeah. Well, aap fir mujhe on air bata dijiye. Koi nahi, agar aapne gaane ki request karni hai. Yeah, go ahead and tell me. You are on air. Bata dijiye.
1: Okay, sure. Yeah, Pia Tum Ho Sagar. This is the song name.
0: Pia
1: by Lata Mangeshkar.
0: अच्छा, ठीक है. पिया तुम हो सागर. और ये विद्या सिन्हा पर फिल्माया गया है.
1: हाँ जी,
0: तो मैं ये देखती हूँ तुम्हारे लिए. ओके,
1: गा रहे.
0: ठीक है, ठीक है, ठीक है. मैं आपके लिए ये गाना लाइन अप कर दिया है मैंने. थैंक यू सो मच. बाय बाय. या ऑलराइट. सो ये जो सॉन्ग है इस फिल्म का, दिल धड़कने दो का, मेरा जो है बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है. आई थिंक दिस इज द बेस्ट सॉन्ग इन द फिल्म. एंड इस सॉन्ग की ये खास बात है कि ये वन शॉट है, अन एडिटेड, अनकट जिसको कहते हैं, कि इसमें कोई भी जो है ब्रेक नहीं है. सो दैट इज़ द टफ पार्ट ऑफ एनी सॉन्ग दैट इज बीइंग शॉट इन जस्ट वन गो. एवरीबडी इज़ वेल रिहर्स्ड, एवरीबडी हैज़ प्रैक्टिस्ड इट सो वेल, सीमलेसली, जीरो एरर, और इसको एक ही शॉट में जो है लिया गया. सो हियर यू गो, दिल धड़कने दो का जबरदस्त गल्ला गुड़ियां.

0: मोर देन 10 ईयर्स अगो ये फिल्म रिलीज हुई थी अबाउट इन 2015 एंड ये फिल्म इतनी पॉपुलर इतनी अच्छी इतनी सुपरहिट फिल्म विद गुड म्यूजिक गुड स्टोरी एंड गुड एक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ द एक्टर्स सभी एक्टर्स को बहुत सोच समझ कर इसमें मूवी में कास्ट किया था. अगर शेफाली नहीं दिखती इस नहीं होती इस फिल्म में इनकी मदर और अनिल कपूर की वाइफ का रोल प्ले करते हुए तो फिर शायद माधुरी दीक्षित हमें नज़र आती. पर ये रोल सबसे पहले बार उनको गया था. She did not want to take up this assignment and then it somehow came into the lap of Shefali Shah. You cannot take your eyes off of this song. Itna acha song, itna very well shot. Mehraz jo hain is film mein is unki ye story dikhai thi, a dysfunctional family kahin na kahin. और ये क्रूज़ पर जाते हैं अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी के लिए और वहाँ पर ये पूरी जो है स्टोरी अनफोल्ड होती है. लवली मूवी और अच्छा सॉन्ग एंड जो गिव अवे था वो इसी फिल्म के एक सीन पर मैंने आज पूछा था आपको. सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स ज्योति जी. आप विनर रहीं आज. कीप द कॉल्स कमिंग इन एवरीबडी. आई एम हियर अंटिल 10 o'clock. आई एम स्टिल टेकिंग योर फोन कॉल्स इफ़ यू हैव एनी सॉन्ग रिक्वेस्ट टू मेक. दिस इज आरजे एकरूप. आई एम हेडेड टूवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. I will be right back.
1: मैं कबूतर फंसे आके होर को फंसे बिना हाय फंसे बिना हाय फंसे बिना चनो जनक तेरा पन दूंगा नक में तो चनो.
2: एक और लड्डू ले लो.
3: थोड़ी और बिरयानी.
2: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा.
4: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं वेट कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए.
5: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए. स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अलोंग विद ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट फाइब्रो स्कैन विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स. कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259. पैशन Health Primary Care.
6: We need to talk.
7: अब क्या हुआ?
6: Nothing. It's not you.
7: Oh no.
6: It's the distance.
7: Distance? We live 10 minutes apart.
6: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
8: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
9: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? या आप H1B पे हैं and looking options with 5% or 10% or even 3% down? So call कीजिए कामना को at 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
15: Your Honor, हजारों लोगों ने ऐड देखा.
14: Miss Clicks,
16: 100 लोगों ने क्लिक भी किया.
14: कस्टमर्स कितने आए?
17: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
18: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Panacea network product.
19: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
20: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
19: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
20: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
19: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
21: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
0: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ October 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೊ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 to 8. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
3: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो और मैं हूं एक रूप, आपका स्वागत करती हूं एक बार फिर से। अभी जो नेक्स्ट ब्रेक आएगी तो उससे पहले मुझे ये शो कंक्लूड करना होगा। 10 o'clock ब्रेक आएगी नेक्स्ट वाली। अभी जो है 9:35 ऑलमोस्ट हो रहे हैं स्टूडियो की क्लॉक में। अच्छे सॉन्ग्स, अच्छा म्यूज़िक हेल्थ को इतना अच्छा बेनिफिट देते हैं कि मन खुश है और बॉडी खुश है तो फिर जो है बीमारियां एट बे रहती हैं। अगर आपको अपने प्रिवेंटिव केयर या जो है प्राइमरी केयर के साथ कुछ सलाह मशवरा करना है तो फिर आप पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ कांटेक्ट बनाएं। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, या अगर है इंश्योरेंस लेकिन ये जो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आउट ऑफ नेटवर्क पड़ते हैं तो कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के पास एक अफोर्डेबल प्लान है जो आप ले सकते हैं एंड दैट कॉस्ट यू अबाउट $85 अ मंथ। डू इंक्वायर अबाउट दिस प्लान, यू कैन गेट इन टच विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एट 214-666-6259 या फिर आप passionhealthphysicians.com पर जाके इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन और ले लीजिए। देर आर रिस्ट्रिक्शंस दैट डू अप्लाई, सो डेफिनेटली इंक्वायर विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एट 214-666-6259 passionhealthphysicians.com। 9 बजे की ब्रेक के बाद ना वैसे तो कोशिश रहती है कि हम थोड़े रीसेंट वाले सॉन्ग्स की तरफ बढ़ें, लेकिन हमारे लिसनर्स कुछ ऐसे गोल्डन सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर मैं उनको कुछ कह नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल दिस वन दैट केम आउट एज अ रिक्वेस्ट आफ्टर 9 o'clock, सो हियर यू गो। हमारे लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की।

राज कपूर एंड हिज इनोसेंस बहुत ही अच्छी फिल्म बनी थी ये. और जो है इसमें नरगिस जी पहेलियां बुझा रही है अपने बच्चों के लिए, और जो भी राज कपूर साहब को समझ आ रहा है पहेली तो वो कह रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं. लेकिन जो टीचर हैं नरगिस जी, उनको गुस्सा आ रहा है. सो ये सॉन्ग लता जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सॉन्ग, हमारे लिसनर जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की. तारा कमर्शियल एनर्जी, दे आर हियर, दे वो आर एबल टू प्रोवाइड कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस, और बहुत अच्छे रेट्स हैं इनके पास. यू शुड ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी इफ़ यू आर लुकिंग टू लाइटन अप योर बिजनेस. डेफिनेटली गेट इन टच विद तारा एनर्जी. दे हैव कंपेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स. यू कैन कॉल दम एट 844-428-2808. थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना, सो लेट मी जस्ट से इट वन मोर टाइम. 844-428-2808 एंड द वेबसाइट इज तारा एनर्जी डॉट कॉम. हमारी लिसनर जो कि ऑन एयर आई थी, अवल मैंने ही ले लिया था उनको ऑन एयर, एंड उन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, तो आज मैं पहली बार सॉन्ग सुनूंगी आपके साथ. शायद सुना हो, आई डोंट नो, बट हियर यू गो.

कल लता जी का बर्थडे है और बर्थडे हो या ना हो, शो जो है ऑटोमेटिकली लता जी के इतने सारे अच्छे अच्छे गाए हुए सॉन्ग्स हैं कि उन पर आ ही जाती है बात. दिस वन ऑल्सो इज़ इन द वॉइस ऑफ लता जी, विद्या सिन्हा पर फिल्माया गया है. बहुत मेलोडियस वॉइस, अनडाउटेडली हैंड्स डाउन द बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग वॉइस इन द हिंदी सिनेमा. कल उनका जन्मदिन आता है. सितंबर 28 इज द डेट दैट शी वाज बोर्न इन एंड बोर्न ऑन. एंड देन जो है फिर तो वो बिल्कुल लाइक आई हैड मेंशनड अर्लियर अबाउट 80 ईयर्स तक उनका करियर चला. इतनी अच्छी आवाज़, इतने अच्छे सुंदर गाने उन्होंने गाए. Tomorrow, September 28th, is also another actor's birthday, जो कि बहुत popular हैं. He is the heartthrob, और heartthrob family को ही belong करते हैं. The famous कपूर खानदान के लाडले बेटे रणबीर कपूर का कल जन्मदिन है. उनके उनकी मूवी का कोई मैंने सॉन्ग या सच कोई लाइनअप तो नहीं किया बिकॉज आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आई. हाउएवर जस्ट नाउ एक रिक्वेस्ट आई है सॉन्ग की, जो कि फिल्माया गया है रणबीर कपूर के पापा के ऊपर. सो सुनते हैं ये वाला सॉन्ग. बालू आपकी तरफ से.

Page 3 Eatery, which is located right here in McKinney, and it is a place worth visiting. From sizzling kebabs and flavorful chaat to fusion bites and refreshing mocktails. If you still haven't experienced Page 3 Eatery at Hub 121 in McKinney, you are definitely missing out on something. This is where the bold Indian street food meets the modern flavors. Whether it is brunch, lunch, dinner, date night, or a foodie meetup, definitely Page 3 is a place to visit. It brings the perfect mix of flavor, energy, and vibrant vibes. Page 3 located at Hub 121 and unki website page3eatery.com. आप वहां पर जाएं, अपना enjoy कीजिए, खाना meet up friends के साथ, family के साथ, and the food is just outstanding. It is definitely going to hit you at the right spot. तो अब जो है अगला song मैं लगाऊंगी वो requested song तो नहीं है. ये वाला song मैं इसीलिए मैंने pick किया because 27th September या 28th September is the date when this very well-known socialist revolutionary was born. बात कर रही हूँ भगत सिंह की, जो कि अपने करेज के लिए, अपने वैलर के लिए नोन है. छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के गए. ये वाला सॉन्ग फिल्म जो है अजय देवगन की बनी थी, उसका ये वाला सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले करना चाहती हूँ. जस्ट थिंकिंग ऑफ भगत सिंह, ईदर टुडे सितंबर 27th और 28th, समवेयर इट्स रिटन 28th, समवेयर दे से 27th इज द डेट दैट ही वाज बोर्न ऑन.

लाहौर कंस्पिरेसी केस में इनको कन्विक्ट किया. जॉन सॉन्डर्स के असासिनेशन के लिए इनको जो है फांसी की सज़ा हुई. और 23 मार्च 1931 में ही वॉज जस्ट 23 ईयर्स ऑफ एज जब इनको जो है इनकी देन ही पास्ड अवे और इनकी एग्जीक्यूशन हुई. सो द लेजेंड फ्रीडम फाइटर रेवोल्यूशनरी यंग ब्लड यूथ और जो है जिनकी बात कर रही हूँ मैं भगत सिंह जिनका सितंबर 27th और सितंबर 28th को जन्मदिन होता है. सो दैट इज़ बाई थिंकिंग ऑफ दिस ब्रेव फ्रीडम फाइटर. चलिए अब जो मैं सॉन्ग लगाऊंगी वो होगा आज के शो का आखिरी सॉन्ग. लाइक आई हैड मैंशनड 2 हफ्ते की छुट्टी एंड देन मैं अब आपको मिलूंगी अक्टूबर 18th को. ये वाला सॉन्ग होगा आखिरी सॉन्ग आज के शो का. विद दिस आरजे एकरूप साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. मधुलिका आएंगी 10 बजे एंड शी विल बी हियर अंटिल 12 o'clock और वो बहुत ही अच्छा शो करती हैं. लव हर वॉइस एंड जस्ट शी विल बी हियर एट 10 o'clock. सो आप सुनते रहिए, enjoy कीजिए, enjoy your time, have a good rest of the Sunday and a wonderful week ahead. I will see you in October. ध्यान रखिए अपना. This is RJ Ekroop signing off for now. Bye bye.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
6: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
7: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
8: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problem solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
9: जीनी हुकम मेरी अकल, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
10: मिराज लाउंज चलिए मेरी अकल, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
9: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
10: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
9: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
9: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
11: अजी सुनते हो?
12: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
13: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स। सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
14: भूख लगी, जोरों की भूख लगी।
15: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
16: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
17: Kya matlab?
18: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
18: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
17: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
19: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
20: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
21: Dallas ki dhadkan 104.9 FM.
11: फनेजिया रेडियो।

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद। फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555। अ बिग शाउट आउट फॉर एक रूप फॉर अ वंडरफुल वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM। Well, they say a daughter is a treasure that fills your heart with endless joy. Whether she is still a little girl holding your hand or a strong woman out there chasing her dreams and conquering the world, today we celebrate her. Ji haan, happy Daughter's Day to our amazing radio family. If you are tuning in with your daughter today, give her a tight hug from our entire team. Daughters are like that perfect, comforting melody that plays in the background of our lives, making everything a little brighter. To all the daughters listening in and to all the proud parents, wishing you all a very happy Daughter's Day.

before I play the next song, right, I want to tell you all about Shri Krishna. जी हाँ, Shri Krishna Jewelers जो हैं, वहाँ जाकर आप explore कर सकते हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत stunning handcrafted collection, फिर चाहे वो gold हो, diamonds हो, polki या फिर बहुत कुछ और, with designs for every occasion and for every style. एंड आप अपने लिए लें, अपनी बेटी के लिए लें, अरे मतलब सजें सवरें, राइट? सो श्री कृष्णा ज्वेलर्स आर लोकेटेड 13145 मेन स्ट्रीट, स्वीट 220, फ्रिस्को. सो याद रखिएगा, यू कैन, यू नो, फेस्टिविटीज बिगिन हो चुकी हैं एंड देर आर सो मेनी रीजन्स टू ड्रेस अप एंड लुक ग्रेट. सो श्री कृष्णा ज्वेलर्स को रखिएगा याद.

Taken from the movie Badhai Ho, that was Jug Jug Jeeve, right? What a beautiful song. Yes, we are celebrating Daughters' Day. You know, this segment is celebrating all our beautiful daughters. And पता है, एक स्टडी हुई थी, एक फैसिनेटिंग स्टडी हुई थी बाय पॉलिश रिसर्चर्स, एंड दे फाउंड दैट हैविंग डॉटर्स इज लिंक्ड टू अ लॉन्गर लाइफ स्पैन फॉर फादर्स. वो होता भी है ना कि एक डैडी डॉटर कनेक्शन की एक बात अलग ही होती है. कहते हैं कि वो जो डेटा है, इट शोड दैट अ फादर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज्ड बाय एन एवरेज ऑफ 74 वीक्स पर डॉटर बॉर्न. अच्छा, ये भी फैक्ट है कि जब मतलब मेरे ना बेटा बेटी दोनों हैं, एंड बेटी हुई तो ऐसा लगा कि बस अब वो जो सपना है वो पूरा हो गया. एंड अगर आपका सपना घर लेने का है, राइट, तो हो सकता है आपका ये जो ड्रीम होम है मे बी क्लोजर देन यू थिंक, क्योंकि 1998 से ड्रीम होम मोर्गेज ने बहुत सी फैमिलीज को किया है हेल्प विद पर्सनलाइज्ड मोर्गेज सॉल्यूशंस, फिर चाहे वो घर खरीदने के लिए हो या घर रीफाइनेंस करने के लिए हो. तो आप वेट ना करें, ज़रूर उन्हें कॉल करें. ड्रीम होम मोर्गेज का नंबर है 972-245-5626, और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com, एज ड्रीम होम मोर्गेज इज मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज अ सॉन्ग रिक्वेस्ट. व्हाट अ ब्यूटीफुल नंबर दिस वन इज, टेकन फ्रॉम द मूवी लम्हे.

टेकन फ्रॉम द मूवी लम्हे, दैट वाज बिटिया रानी. कितना प्यारा सा गाना है ना. अच्छा, ऐसा नहीं है कि बेटे ध्यान नहीं रखते, बेटे भी बहुत ध्यान रखते हैं, बट शायद वो गर्ल्स जो हैं, जो डॉटर्स होती हैं, दे हैव अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स, या दे हैव अ वे ऑफ सेंसिंग थिंग्स. शायद, पता नहीं, मुझे तो यही लगता है कि लड़कियां जो हैं वो समझ जाती हैं, भाप जाती हैं कि भाई मम्मी का मूड सही है, नहीं है, दुखी है, खुश है. बेटे को बताना पड़ता है कि भाई ये चल रहा है, राइट? ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है. बट ये भी फैक्ट है कि लड़कियां जो हैं वो ध्यान रखने में थोड़ा सा, मे बी टैड बिट, बट बेटर, ऐसा मुझे लगता है. बट अगेन, यू कैन, आई एग्री टू डिसएग्री विद यू, और यू, आई मीन, इफ यू हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, दैट्स फाइन टू. सो जब ध्यान रखने की बात आ ही रही है, तो मैं आपको टेक्सस प्राइमरी केयर के बारे में बताऊं, बिकॉज इन्होंने 13 साल से टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक जो हैज़ प्राउडली सर्व्ड एंड केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी. और अब वो एक नए नाम से फ्रिस्को की लोकेशन में खुले हैं, एंड द नाम, द नेम इज ल्यूनॉक्सी मेडिकल. दिस हैज़ बीन फाउंडेड बाई डॉक्टर मनदीप आचार्य. ये जो ल्यूनॉक्सी मेडिकल जो है ना, इट ब्रिंग्स सो मेनी थिंग्स अंडर वन रूफ, जैसे कि प्राइमरी केयर, बी इट अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग ले लें, या एक्सरेज, या सिटी स्कैन्स, या आपको कोई कार्डियक डायग्नोस्टिक्स करवाना है, या हिमालयन मेड स्पा की सर्विसेज यूज करनी है, दे आर ऑल अंडर वन रूफ. सातों दिन खुले हैं, जी हाँ, दे आर ओपन 7 days अ वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM. मजे की बात, यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड व्हाट्सोएवर. सो डेफिनेटली, आई वुड रिकमेंड कि टेक्सस प्राइमरी केयर रखें आप याद, एज दे आर ओपन 7 days अ वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM, एंड यू कैन वॉक इन एनी टाइम दैट यू वॉन्ट, नो अपॉइंटमेंट नीडेड.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
2: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
2: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
2: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
4: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
5: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
4: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
5: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
6: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
1: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
6: Barista House, richness of biryani bliss.
7: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
9: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में सब संभाल लेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
10: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
11: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
10: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
11: वो पता नहीं।
1: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स है। इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, पावर्ड बाय रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन। With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
10: Ab hui na smart marketing.
1: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI. Turn attention into customers.
12: Smart Reach AI, a Panacea Network product.
13: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
14: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।

जी हाँ बिल्कुल, कुड़ी नू नचने दे यार, दिस इज मधुलिका लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। वेल इस सेगमेंट में वी आर सेलिब्रेटिंग डॉटर्स डे, सो टिल 11 o'clock वी आर लिस्निंग टू सॉन्ग्स सेलिब्रेटिंग आर डॉटर्स। एंड उसी बात से रिलेटेड है ये नेक्स्ट गिव अवे विच इज कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स। जी हाँ, ये आपका चांस है टू विन $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 फॉर डाइन इन ऑप्शंस ओनली। सो साथ ही साथ आप इंजॉय कर सकते हैं जब चंडीगढ़ बाइट्स जाएंगे द स्पेशल थाली जो मिलती है मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली। चंडीगढ़ बाइट्स जो है, अब आप पूछेंगे भाई ये है कहाँ, तो अगर आपको अभी तक नहीं पता तो बता देती हूँ, दे आर लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव जो कि एलन में है। सो डू विजिट चंडीगढ़ फॉर मोर डिटेल्स। एंड हमारे लिसनर्स, अब ये गिव अवे क्वेश्चन आपके लिए है, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे ऑन एनी अदर शो एट फाइनेशिया इन द लास्ट 1 month, बिकॉज हम चाहते हैं कि बहुत से हमारे लिसनर्स को ये मौका मिले। तो सवाल ये है दैट सिंस इन दिस सेगमेंट वी आर सेलिब्रेटिंग आर डॉटर्स, यू हैव टू टेल मी 3 movies, नॉट सॉन्ग्स, आई एम आस्किंग फॉर 3 movies दैट सेलिब्रेट डॉटर्स। सो एनी 3 movies सेलिब्रेटिंग डॉटर्स, यू हैव टू गिव मी अ कॉल, द स्टूडियो नंबर इज 972-235-5555।

0: ऑलराइट, तो हमने पूछा था आपसे सवाल कि दैट वी आर सेलिब्रेटिंग डॉटर्स डे एंड चंडीगढ़ बाइट्स का ये जो गिव अवे है विच इज़ $10 ऑफ बिलिंग ऑफ $50 ऑनली डाइन एंड ऑप्शन, राइट? सो सवाल ये था कि आप मुझे कॉल करके बताएं कोई भी ऐसी तीन मूवीज विच आर सेलिब्रेटिंग डॉटर्स. वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Yes, ma'am.
0: हाउ आर यू एंड व्हाट्स योर नेम?
1: My name is Rajesh,
0: ऑल राइट राजेश
1: and
0: जी,
1: the
0: तो
1: answer is
0: जी बताइए.
1: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दंगल
0: जा सिमरन जा.
1: एंड हम आपके
0: ओके,
1: हैं कौन, हम आपके हैं
0: ऑसम
1: कौन, दंगल.
0: ऑसम राजेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया आपने ये गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर एंड यू नो टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू व्हाइल आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी राजी. इसमें भी यू नो डेफिनेटली दिस डॉटर इज बींग सेलिब्रेटेड. सो आप होल्ड करिएगा, आई टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू व्हाइल आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग फॉर आवर लिसनर्स.
1: थैंक यू.

ऑलराइट, यस, इन दिस सेगमेंट वी आर सेलिब्रेटिंग डॉटर्स टुडे. सो एक मजे की बात ये है दैट यू नो इट्स अ बिल्ट इन बेस्ट फ्रेंडशिप. दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, यू नो, एज डॉटर्स ग्रो, जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं द रिलेशनशिप ब्यूटिफुली इवॉल्व्स. दे बिकम समवन दैट यू कैन शेयर डीप लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस विद, यू नो, स्वैप लाइफ एडवाइस और जस्ट सिट विद इन कंफर्टेबल साइलेंस एंड इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल. सो I'm sure you all agree with me, and if you don't or you do, just give me a call and share your thoughts. Daughters are the best gift God can give.

Thank you so much for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, Just Chill. Well, पहले हमारे एक घंटे के सेगमेंट में हमने सेलिब्रेट की हमारी डॉटर्स, और अब करते हैं टेम्पो थोड़ा सा चेंज और बस करते हैं चिल, यू नो, जस्ट एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल.

taken from the movie Fukre, that was Ambar Sariya. And before I play the next song, bhai, festivities are in the air and so many parties, right? Itni invites aa chuki hain, aane wali hain, to bhaiya tayar ho jaye, saj jaye, savar jaye. Aur मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे सकती हूँ. जी हाँ, PMJ ज्वेल्स जा सकते हैं आप, विच इज़ नाउ इन फ्रिस्को, एंड दे ब्रिंग ओवर 60 इयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस. टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप मिलेगी आपको यहाँ. आप एक्सप्लोर कर सकते हैं खूबसूरत से खूबसूरत गोल्ड, डायमंड या फिर ब्राइडल कलेक्शंस फॉर एवरी सेलिब्रेशन. सो डू विजिट PMJ ज्वेल्स, विच इज़ लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट फ्रिस्को. ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी. सो definitely go there and explore and enjoy the collection. That's PMJ Jewels for you all.

Well, that was taken from the movie Bluff Master and इसमें दिखे थे अभिषेक बच्चन एंड प्रियंका चोपड़ा. अच्छा, प्रियंका चोपड़ा के हाथ में एक टैटू है विच सेज डैडी इज लिटिल गर्ल एंड इट इज सो ब्यूटिफुल एंड आई जस्ट लव दैट, यू नो. सो शी हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट हाउ स्ट्रांग हर रिलेशनशिप वॉज विद हर डैड, यू नो, द डैड डॉटर बॉन्ड दैट दे हैड. इट्स ऑलवेज सो वंडरफुल लिसनिंग ऑल अबाउट इट.

टेकन फ्रॉम द मूवी तारा रम पम. मूवी पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कितनी चली थी नहीं चली थी, बट दिस सॉन्ग इज वन ऑफ माई फेवरेट एंड आई लव प्लेइंग दिस सॉन्ग इन माई शो. वेल, दिस इज मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल. दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 9722355555. सुन रहे हैं कुछ मेरी और कुछ आपकी पसंद के गाने. एंड हियर इज द नेक्स्ट वन टेकन फ्रॉम द मूवी अंधाधुन.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
6: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: It's the time to clock out.
8: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushbu, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
7: It's the time to
9: Beta, 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
9: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
9: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
14: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
13: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
15: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 पीएम टू 3 पीएम। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
16: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
17: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
16: Miss clicks.
18: 100 लोगों ने click भी किया.
16: Customers कितने आए?
19: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
18: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI, turn attention into customers. Smartreach AI, a Phanasia Network product.
1: Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
2: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फनेशिया 104.9 FM।

Well, that was taken from Ishkia. This is Madhulika लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, Just Chill. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555. सुन रहे हैं कुछ मेरी और कुछ आपकी पसंद के गाने.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
5: अरे सारे तो सेम है।
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
5: ओह हाँ, ये तो अलग है।
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
8: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका. चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट.
4: ये लास्ट दिवाली पहना था ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है. हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
9: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडिया नारायण जाओ बालिके.
4: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
9: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. तथास्तु.
10: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को. इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन.
11: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले, सुनो,
12: हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म.
11: सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
13: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
14: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
15: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मार्विन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ फनीशा रेडियो पर.

0: एंड वेलकम बैक. दिस इज़ KZMP 104.9 FM फनेश रेडियो पे सुन रहे हैं आप मुझे यानी कि नीलम को. और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. ये कार्यक्रम आपकी सेवा में हम प्रस्तुत करते हैं शनिवार रविवार की दोपहर, आज शनिवार नहीं है, रविवार की दोपहर 1 से 2 के बीच में, जहाँ पर आपके लिए लाती हूँ मैं गैर फिल्मी गाने, नगमे और तराने. सैटरडेज के शोज में हम आपके लिए लाते हैं फिल्मी गाने, बॉलीवुड का सेगमेंट होता है एंड 2 to 3 PM वी डू कम्युनिटी आउटरीच की प्रस्तुति कम्युनिटी राउंड अप. लेकिन रविवार की दोपहर जो बातें होती है 1 से 2 के बीच में, उसमें हम आपके लिए ज़्यादातर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बातें होती है, गज़ल, सूफी बैंड, वेब सीरीज के गाने, OTT प्लेटफॉर्म्स की बातें होती है और बहुत सारे कुछ ऐसे गाने, ऐसे तराने जो फिल्मों में आप नहीं सुनते. आज का जो हादा सेगमेंट है, क्योंकि हमारे पास 1 ही घंटा होता है इस कार्यक्रम में, 1 से 2 का ही होता है वक्त, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितने भी लम्हे, जितने भी आप मेरे साथ पल बिताए, इस कार्यक्रम के साथ बिताए, वो बहुत ही म्यूजिकल हो. सो जो आधा सेगमेंट है टिल कमर्शियल ब्रेक, जो भी गाने आप सुनेंगे लता जी की आवाज़ में, गैर फिल्मी गज़ल सुनेंगे. जी हाँ, चूँकि ये गैर फिल्मी सेगमेंट है, कल है 28th of September. जी बिल्कुल, संगीत की दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, मैं कहूँगी अनमोल धरोहर जो है, वो सूर कोकिला हमारी लता जी, भारत रत्न लता जी का है जन्मदिन, तो मैं नहीं कहूँगी जन्म जयंती, बिल्कुल जन्म जयंती है. और जिन्होंने हज़ारों अमर गाने गाए हैं फिल्मी दुनिया में, लेकिन आज का सेगमेंट जो है वो गैर फिल्मी है और इसीलिए मैं आपके लिए गैर फिल्मी गाने जो उनके हैं, जो गैर फिल्मी उनकी गज़ल है, वो सुनवाऊँगी. वेल 20 मिनट्स में उनके साथ इंसामित तो नहीं होगी कि हम उनकी सारी गज़ल सुन पाए गैर फिल्मी, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी उनकी 3 या 4 गज़ल आप सुने, क्योंकि एज आई सेड उन्हें हम श्रद्धांजलि देंगे इस गज़ल के ज़रिए, जहाँ पर कल है उनकी जन्म जयंती. और 104.9 FM फनेशा रेडियो, मैं हूँ नीलम आपके साथ एवरी वीकेंड.
1: डायमंड जैसी आवाज़ हमारे साथ
0: और 9722355555 ये कार्यक्रम आपका, आप ही के लिए एवरी सैटरडे संडे.

मुझे खबर थी वो मेरा नहीं पराया था। फिल्मों में जब भी लता जी गाती थी तो किसी किरदार की आवाज़ बन जाती थी और हर एक किरदार की वो आवाज़ बनी। लेकिन जब वो गैर फिल्मी गज़लें गाती है तो लगता है कि जैसे भी दिल में और उनकी जो आवाज़ में एक पाकीज़गी है और उसी के साथ जो बारीकियाँ होती है, उर्दू की बात हो, हिंदी की बात हो, किसी भी भाषा की जो बारीकियाँ होती है वो इतनी खूबसूरती से वो गाती है कि हर गज़ल में जैसे कि जादू हो जाता है। आज का चूंकि गैर फिल्मी सेगमेंट है, कुछ गज़ल्स हम सुनेंगे लता जी की आवाज़ में, क्योंकि कल है उनकी जन्म जयंती। 104.9 FM फनी शाह से दे रहे हम उनको श्रद्धांजलि राइट हियर।

हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। क्या बात है जगजीत सिंह साहब और उनके साथ लता जी की आवाज। कहते हैं कि गजल कहना हर किसी की बात नहीं है, गजल को गाना हर किसी की बात नहीं होती, लेकिन लता जी की आवाज ऐसी है, मैं थी नहीं कहूंगी उनके लिए, क्योंकि मैं कभी नहीं मानती कि जो कलाकार है वो बिल्कुल चले जाते, लेकिन उनकी आवाज अमर होती है, वह उनकी आवाज होती है हमारे साथ सालों तक, सदियों तक की आवाज़ें गूंजती रहेगी, क्योंकि वो है लता जी की आवाज़। और किसी भी कलाकार की अगर हम बात कर ले तो लता जी की आवाज़ में गज़ल सुनना किसी इबादत से कम नहीं। चाहे आप भजन उनकी आवाज़ में सुन ले, चाहे फिल्मी गीत सुन ले, कोई गैर फिल्मी गाना सुन ले, किसी के मूड की कोई भी बात हो, लेकिन कोई भी गीत हो, लगता है कि जैसे कि इबादत हम कर रहे हैं। दैट इज़ लता जी। उन्होंने 4.9 FM 20th of September, दैट इज़ टुमारो, लेकिन चूंकि हमारी और आपकी मुलाकात सिर्फ सैटरडे संडे होती है, तो आज हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं टिल कमर्शियल ब्रेक। जी हाँ, 1:30 बजे तक आप सुनेंगे उन्हीं की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गज़ल्स, और कुछ सजदा एल्बम्स की भी हम बातें करेंगे। सजदा एल्बम जो है जगजीत सिंह साहब के साथ, उन्होंने उस एल्बम्स में सारी गज़ल्स गाई है। एंड इफ़ यू आर अ बिग फैन ऑफ गज़ल, इफ़ यू आर अ बिग फैन ऑफ जगजीत सिंह साहब एंड लता जी, बिल्कुल आपने वो एल्बम सुना ही होगा। उसमें से कुछ चुनिंदा गज़लें हमेशा हमने आपको यहाँ पर सुनवाई है, सुनवाती रहूँगी, क्योंकि ये है सेगमेंट आपका जहाँ पर हम गैर फिल्मी गाने आपके लिए लाते हैं एवरी संडे। उसी बात पर चलिए उमर ख्वाजा को याद कर लेते हैं। दिस पार्ट ऑफ द शो इज़ ब्रॉट यू बाय द लॉ ऑफिस उमर ख्वाजा। इफ़ यू आर अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड इन अ कार, ट्रक और एनी काइंड ऑफ स्लीप एंड फॉल इंसिडेंट, एक ही नाम एंड दैट इज़ मिस्टर उमर ख्वाजा। 4693500046@attorneyomar.com, that is the website. Once again, that is attorneyomar.com. You don't pay until you win. जी बिल्कुल free consultation, तो आज ही उनकी विजिट कीजिएगा website attorneyomar.com. लता दीदी की आवाज में, लता जी की आवाज में गजल की कुछ बातें हो रही है, और ये जो अगली गजल आपको सुनवाने जा रही हूँ ना, लता जी और आशा जी ने दोनों ने साथ में फिल्मी गाने भी बहुत कम गाए हैं, बहुत कम, आई वुडंट से मैनी मैनी। ऑफकोर्स वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स आई लव 60s के और 70s के तो है ही उनके, लेकिन जो उत्सव फिल्म, आई वॉज ट्राइंग टू रिमेम्बर व्हिच वाज दैट फिल्म, मन क्यों बहका रहे, राइट, उनमें उसमें उनकी दोनों की आवाज़ कितनी प्यारी लगती है। सो वेरी वेरी फ्यू फिल्मी सॉन्ग्स, तो सोचिए ज़रा कि गैर फिल्मी गाने तो कितने कम हो गए, है ना। उसमें से एक गज़ल आपके लिए लाई हूँ जिसमें दोनों बहनों की आवाज़ है, लता जी एंड आशा जी, राइट हियर ऑन 104.9 FM।

तुमको ना भूल पाएंगे ऐसा लगता है, लता जी के साथ आशा जी एंड जगजीत सिंह साहब। जी हाँ, इन तीनों की आवाज़ों में आपने बहुत ही खूबसूरती गज़ल सुनी। और लता दीदी ने, लता जी ने बहुत सारे उस्तादों के साथ काम किया है, ऑफकोर्स फिल्मों के लिए तो किया ही है, लेकिन गैर फिल्मी एल्बम्स की अगर हम बात कर लें तो सजदा एल्बम, जैसे कि मैंने कहा, जगजीत सिंह साहब के साथ उन्होंने काम किया है। फिर वो गालिब साहब की गज़ल हो, मीर की हो, किसी भी क्लासिक गज़ल हो, लेकिन जब उनकी आवाज़ में हम सुनते हैं तब लगता है कि हर एक शेर, हर एक लफ्ज़ को कुछ नई ज़िंदगी मिल गई। एंड दैट इज़ लता जी ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी है।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Huzoor, aapko chunna hoga, hum ya ye biryani?
3: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
2: Aakhir kya hai is biryani mein?
3: Dam mein narmi, masalon mein jadoo aur har niwale mein nawabi swaad.
4: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
1: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
4: Barista House, richness of biryani bliss.
5: Beta, 95% आए?
6: हाँ मम्मी.
5: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
7: मेरा?
5: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
7: वो
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
1: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu.
10: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
9: Kaise?
10: Page 3 eatery?
9: No, not another restaurant again.
10: Dude, it's page. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and food crafted to suit every craving, every appetite.
9: Matlab great food, great drinks, and great company. Yani ki main.
11: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
12: 5 se 8 straight from the heart. Kal Hindi Hindi bol.
13: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
14: Call Navneeta Khemka at 347-449-4242.
12: Phone uthaye, number dabaye.
13: 347-449-4242.
15: That garba was totally worth it. We had so much fun.
16: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
15: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
17: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
18: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
19: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival
16: on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
6: वेलकम बैक, दिस इज के जी एम पी 104.9 FM फनी शरीर पे. मैं हूं नीलम आपके साथ. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी भूल गई वेरी वार्म वेलकम एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. ये है आपका शो और आपके साथ हम रहते हैं, जहां पर हम आपके लिए बेहद अच्छे नगमे तराने लाते हैं. जी हाँ, सैटरडेज एंड संडेज का होता है ये सेगमेंट. सैटरडेज एंड संडेज में सैटरडेज हम 12 से 3 होते हैं आपके साथ, जहां पर 3 बजे तक होते हैं बॉलीवुड की बातें, लेकिन 2 से 3 के बीच में हम जुपरा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं. दैट इज कम्युनिटी आउटरीच. कम्युनिटी आउटरीच की होती है ये प्रस्तुति 12 से 3 ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो. एंड संडेज दैट इज टुडे, जी हाँ, 12 से 1 के बीच में हम गुजराती कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं आपके लिए. दैट इज टिल 1 एंड 1 to 2 PM इट इज दिस सेगमेंट, जहाँ पर हमारी कोशिश होती है आपके लिए कुछ गजल से लेके सूफी बैंड से लेके इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से लेके OTT प्लेटफॉर्म की गाने, वेब सीरीज के गाने. जी हाँ, जो गाने आप वेब सीरीज में सुनते हैं, जो गाने आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के होते हैं, प्राइवेट एल्बम्स के होते हैं, वो गाने हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं टिल 2 PM एवरी संडे. AG Fintechs का शुक्रिया अदा करना चाहूंगे. दिस पार्ट ऑफ अ शो इज ब्रॉट यू बाय AG Fintechs और उनका नंबर है 4699429888. यू कैन विजिट agfintechs.com. जी हाँ, फाइनेंशियल सर्विसेज में बिल्कुल आपकी मदद कर सकते हैं, चाहे इंडिविजुअल की बात हो या बिजनेस की. एंड दैट इज AG Fintechs. 1:30 बजे तक हमने लता जी को, जी हाँ, लता दीदी को श्रद्धांजलि दी. कल है 28 सितंबर और उनकी जन्म जयंती के लिए हमने कुछ गैर फिल्मी उनकी जो गजल रही, सजदा एल्बम्स की बात हो या आशा जी के साथ बात हो या जगी सिंह साहब के साथ, वो बहुत ही खूबसूरती से, चाहे मैंने जैसे कहा कि वो भजन गाए या गजल गाए, उनको सुनना है कि इबादत से कम नहीं होती. उनकी जो आवाज़ है, इट इज़ जस्ट लाइक यू आर सो क्लोज टू गॉड. एंड दैट इज लता मंगेशकर. अब अगले 30 मिनट हम आपके लिए कुछ मिले जुले गैर फिल्मी गाने लाएंगे, कुछ वेब सीरीज की बातें करेंगे, कुछ प्राइवेट एल्बम्स की बातें होगी, कुछ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के गाने सुनवाऊंगी. जी बिल्कुल. एंड दैट इज ऑल टिल 2 PM ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो विथ मी योर होस्ट नीलम एवरी वीकेंड. बहुत ही पसंदीदा मेरे और आपके बहुत ही खूबसूरत सिंगर शफकत अमानत अली साहब.

ओरिजिनल बाय ऑफ कोर्स रफ़ी साहब को कौन बोल सकता है। गाइड का वो गीत रफ़ी साहब ने हम बेखुदी में तुमको पुकारते चले गए देवानंद साहब पे फिल्माया हुआ, लेकिन यहाँ शफकत अमानत अली साहब ने बेहद खूबसूरती से रफ़ी साहब को याद किया ऑन 104.9 एफएम फनेशा रेडियो। जी बिल्कुल, वेब सीरीज़ की जब हम बातें करते हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे सीरीज़ के मुझे रिकमेंडेशन भी देते हैं, गाने सुनना भी चाहते हैं। राख के लिए एक गाने की रिक्वेस्ट आई है, राख जी बिल्कुल, जिसमें अली फजल एंड सोनाली बेंद्रे थी। एंड यू नो आई व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग दैट फर्स्ट टू एपिसोड्स के बाद मुझे इट वाज सच अ ट्रेजिक, आई नो इट वाज बेस्ड ऑन अ लाइफ ट्रू लाइफ इवेंट्स। बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग है नो डाउट सोनाली बेंद्रे की, अली फजल की, और दो भाई बहन, आई थिंक यस दोनों भाई बहन की कुछ हत्या एंड किडनेपिंग

बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग है नो डाउट सोनाली बेंद्रे की, अली फजल की, और दो भाई बहन, आई थिंक यस दोनों भाई बहन की कुछ हत्या एंड किडनैपिंग की बात है। बट वेरी वेरी ट्रेजिक, वेरी सैड सीरीज, और जिस तरह से उसमें सारे एपिसोड्स दिखाए गए हैं और जिस तरह से सोनाली बेंद्रे ने इसकी एक्टिंग की है, कभी कभी ऐसी सीरीज देखकर एंड वैन स्पेशली वैन दे आर बेस्ड ऑन अ ट्रू लाइफ इवेंट्स, लगता है कि हम टीवी पे एज एन एंटरटेनमेंट देखते हैं, यू नो व्हाट, एंड आई कैन डू अ होल सेगमेंट ऑन दैट। फॉर अस इट्स एन एंटरटेनमेंट, वी आर वॉचिंग इट आफ्टर अवर डिनर एज अ वेब सीरीज पार्ट, राइट। और उसमें जो मम्मी पापा का रोल किया है, फॉर एग्जाम्पल सोनाली बेंद्रे इज़ अ मम्मी और अली फजल इज़ एन इंस्पेक्टर, तो उन्होंने भी एक्टिंग ही की है, लेकिन उनको देखकर भी हमें इतना बुरा लगता है बिकॉज दे आर द पेरेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर चाइल्ड। तब मुझे लगता है कि इन रियल लाइफ इट इज़ सच अ ट्रेजिक थिंग कि जो माँ बाप पे वो बीती होगी, एंड वी आर वॉचिंग इट एज एन एंटरटेनमेंट, एंड दैट इज़ अ रीज़न सम हाउ समवेयर जब भी मैं कोई लाइफ ट्रू लाइफ इवेंट्स की बात देखती हूँ, वेदर इट इज़ अबाउट नेचुरल डिज़ास्टर्स की बात हो या किसी की किडनेपिंग की या मर्डर की, आई फील वी हैव मेड इट एज एन एंटरटेनमेंट। हम उसे एंटरटेनमेंट तरीके से देखते हैं, हम उसे इवन वैन वी गो टू थिएटर वी वॉच इट विथ आवर पॉपकॉर्न इन आवर हैंड्स, कि ये एक मूवी है, दिस इज़ अ ड्रामा एंड वी एन्जॉय द ट्विस्ट एंड टर्न्स। बट इन रियल लाइफ जिस पे वो बीती होगी, जिस माँ बाप पे, जिस परिवार पे, एंड वैन यू टॉक अबाउट द नेचुरल डिज़ास्टर्स, जिस देश पे या जिस सिटी पे, उस पे क्या बीती होगी, एंड यू नो मे बी इट इज़ गुड और बैड, दैट इज़ अगेन एज आई सेड वी कैन हैव अ होल डिबेट ऑन दैट, कि ऐसी घटनाओं पर मूवीज़ या ऐसी घटनाओं पर वेब सीरीज़ बनाना या शोज़ बनाना वाकई में वो कितनी, आई वुडंट से कि इनसेंसिटिव, कितनी एक अच्छी बात है, बुरी बात है, एंड अगेन इट इज़ एवरीबडीज होल ओपिनियन। लेकिन मैं अक्सर मानती हूँ कि ये जो ट्रू लाइफ इवेंट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली हैपन्ड समवेयर समहाउ इन समबडीज़ लाइफ।

आपके ढेर सारे कॉल्स के साथ जी बिल्कुल। और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरे लिसनर्स को बताना पड़ता है कि भाई मेरा गाना खत्म हो गया एंड आई हैव टू गो। जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके ढेर सारे कॉल्स, आपकी बातें, कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, वेदर इट इज़ सैटरडे संडे का मेरा गुजराती शो हो या दिस गैर फिल्मी सेगमेंट, एंड एनी ओपिनियन दैट वी शेयर हियर। यू गाइज ऑल्सो शेयर सो मेनी ओपिनियंस एंड इट इज़ ऑल अबाउट यू नो वी शेयर द कॉमन इंटरेस्ट एंड दैट इज़ म्यूज़िक। ऑफकोर्स ये म्यूज़िकल शो है लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती है बियॉन्ड म्यूज़िक की जो हम आपसे भी करते हैं यहाँ एवरी वीकेंड। राख की बातें हम कर रहे थे, राख का गीत आपने ये सुना एंड इट इज़ ऑन अमेजन प्राइम अगर आपने अभी तक नहीं देखी ये सीरीज़ जिसमें है सोनाली बेंद्रे एंड अली फजल। चलिए अगली जो बात है, अगली प्रस्तुति, दैट इज़ यामिनी जी की पसंद पे, और उन्होंने मुझे एक नया नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये ड्रामा देखना आपको अच्छा लगेगा। जी हाँ, ये पाकिस्तानी ड्रामा है आपकी इज्जत, तो मैं बिल्कुल देखूंगी भाई। हम आपके सजेशन और रिकमेंडेशन बिल्कुल जहे नज़र रखते हैं और उसे देखते भी हैं, तो ये भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गीत आप ही की पसंद पे फ्रॉम द पाकिस्तानी ड्रामा आपकी इज्जत।

जब तो याद आए चैन चुराए जी, बिल्कुल, एंड दैट इज फ्रॉम आपकी इज्जत. जी हाँ, और यामिनी जी ने सुनने चाहिए थी ये बातें फ्रॉम दिस पाकिस्तानी ड्रामा. और अगर आपका चैन किसी ने ले लिया है तो वेल, पैशन हेल्थ आपको मदद नहीं कर सकता, लेकिन पैशन हेल्थ बिल्कुल आपकी सेहत के लिए आपकी मदद कर सकता है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, तो बिल्कुल प्राइमरी केयर पैशन हेल्थ पे आप ज़रूर जाइएगा. यू कैन कॉल देम 214-666-6259. वंस अगेन दैट इज 214-666-6259. और यू कैन विजिट passionhealthphysicians.com. अगर आपके नेटवर्क में वो नहीं भी है, अगर आपके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, देन दे कैन हेल्प यू फॉर जस्ट $85 अ मंथ. वो है उनकी ऐसे प्लान, एंड दैट इज अ प्राइमरी केयर विथ पैशन हेल्थ. मैं हूँ नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके ढेर सारे कॉल्स के लिए, आपकी ढेर सारी बातों के लिए. एंड शुक्रिया अदा इसलिए भी करती हूँ क्योंकि आपको हमारी पसंद आ रही है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो म्यूजिकल कार्यक्रम है. कोशिश मेरी रहती है कि सैटरडे हो या संडे, सैटरडे के बॉलीवुड के सेगमेंट में हम आपके लिए फिल्मी गाने लाते हैं, कोई थीम बेस्ड. उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि कुछ सुरीले गाने, बहुत ही सुरीले गाने हो. संडे का जो सेगमेंट है उसमें भी गैर फिल्मी बातें, लेकिन गाने बिल्कुल वहीं सुरीले, आप ही के लिए एवरी वीकेंड.

0: मिजाज बदले हैं, बातों के रिहाज बदले हैं, तुमको तो जमाना हो गया वर्मा तो फिर भी आज बदले हैं।
1: जान कहते थे जो
2: कुछ गैर फिल्मी गाने कुछ गैर फिल्मी बातें आपके साथ मैं नीलम करती हूँ एवरी संडे बिटवीन 1 and 2 PM। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड। जी हाँ, आपकी जो वीकेंड की म्यूजिकल जर्नी होती है वो हम कोशिश करते हैं कि आपकी जर्नी ज़्यादा म्यूजिकल हो जाए। चाहे आप आपकी ग्रोसरी लिस्ट लेकर निकले हैं, लंच पे है, आप किसी दोस्त के घर जा रहे हैं, बच्चों को ड्रॉप करें, बच्चों को पिकअप करें, बस यूं ही आप निकल पड़े हैं, संडे है या फिर हमें घर पे सुन रहे हैं, वेल दिस इज़ योर शो। और इसीलिए मैंने जैसे कहा कि हम आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए कोशिश होती है कि हर लम्हा आपका हो म्यूजिकल यहाँ पे, एंड दैट इज दिस इज सुरीले लम्हे विथ मी योर होस्ट नीलम एवरी संडे।
3: आपका प्रेम।
2: इसी बात पर मैं नीलम लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मुलाकात होगी अगले शनिवार 12 बजे।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG FinTax, your growth, our strategy.
5: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com. It's the time to crack out.
11: It's the time to catch up. And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, sizzling flavors और चटपटे appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. Order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
4: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
12: ये last Diwali पहना था। ये नेहा की शादी में। इस पे तो already Instagram पर DP है।
13: Hey भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
14: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
12: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
14: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
4: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
15: वेट अ मिनट,
4: did someone say $100 credit for pizza? If you have an Amex Platinum card, you may be eligible for a $100 credit at Fun Pizza Kitchen. Treat yourself to cheesy favorites, special flavors, and mouth-watering toppings that'll have you coming back for another slice. Just visit the Fun Pizza Kitchen Frisco location before September 30th. For eligibility and details, call the Frisco location or simply walk in. Fun Pizza Kitchen. Bring your appetite. We'll bring the flavor.
16: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
17: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
16: Miss Clicks?
18: 100 लोगों ने click भी किया.
16: Customers कितने आए?
19: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
20: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI, turn attention into customers. Smartreach AI, a Fun Asia Network product.

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

Londoners!

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
3: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 टू 8 पीएम ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री ब्रिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
4: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है माँ का रिव्यू
5: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026 मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे
6: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
7: Sign
8: milna mushkil hai, lekin Plano mein zabardast khana, uska signature mil gaya. Signature cuisine in Plano. Famous nehari, sizzling grills, crispy fried chicken or mouth-watering paratha rolls. Aur koi bhi celebration ho, to banquet services bhi. Located at Spring Creek and Alma, East Plano. Visit signaturecuisine.net. Signature Cuisine. Har taste par apna signature.
9: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
10: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: right, guys. You are listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. Unfortunately, this is my closing out for this week. I've been your RJ Rhea for the past hour. It has been a blast to play these amazing songs, talk about college football, zodiac signs, and so much more. I hope everyone has a great Sunday as the weather has started to cool down. Let's all have a great week heading into autumn, heading into October. October is crazy. Halloween spooky season is here. I hope everyone has a great day and stay tuned to 104.9 FM Fun Asia Radio.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
5: अरे सारे तो सेम है।
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
5: ओह हाँ, ये तो अलग है।
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
8: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
7: Fikar not. We have the perfect solution.
6: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
9: It's true. Hum apne sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
10: That garba was totally worth it. We had so much fun.
11: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
10: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
12: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
13: अजी सुनते हो?
14: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
12: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
15: अजी सुनते हो? सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
16: इंडिया में? तो यहाँ जो friends और relatives हैं, वो कैसे attend करेंगे?
15: पर यहाँ सारे arrangements मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
17: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
13: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
18: तुझे सजाना है।

हम साथ साथ हैं। जन्मों का तो पता नहीं, लेकिन हर सैटरडे और संडे को जरूर हम एक साथ होते हैं यहाँ 104.9 FM की फ्रीक्वेंसी पर। स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का इस खूबसूरत रोमांटिक गाने के साथ, द टाइटल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म हम साथ साथ हैं। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात। आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक। फिलवक्त स्टूडियो की घड़ी में 3:09 हुए हैं। आज है सितंबर की 27 तारीख, यानी कि 27th of September 2026। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल, एंड दिस इज आवर नॉन स्टॉप 90s सेगमेंट। पहुंच चुके हैं जनाब हम 1999 पर, और इसीलिए हमने आपको सुनवाया 1999 में रिलीज होने वाली फिल्म का ये गाना। हम साथ साथ हैं वाज अ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ दैट ईयर, और इस पर्टिकुलर गाने में जो आवाज़ें आपने सुनी वो थी हरिहरन, अनुराधा पोडवाल, कुमार सानू, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति एज वेल एज अलका याग्निक। फिल्म तो डेफिनेटली आप सब ने ज़रूर देखी होगी। इट वॉज ए आई वुड से अ फैमिली ड्रामा फिल्म, और इसे सूरज बड़जत्या ने डायरेक्ट किया था, लिखा भी उन्होंने ही था। राजश्री प्रोडक्शंस ने डिस्ट्रीब्यूट किया था फिल्म को और प्रोडक्शन में उनका हाथ था। नाउ दिस हैड अ मल्टी स्टार एंसेंबल कास्ट, एवरीवन, क्या किस किस का नाम लो, सलमान खान, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान, तबू, सोनाली बेंद्रे, मुनीश बहल, नीलम कोतारी, महेश ठाकुर, आलोक नाथ, रीमा लागू, और कोई रह तो नहीं गया पीछे। आई मीन देयर वर सो मैनी पीपल इन दिस मूवी, एंड इट हैड अ ग्रेट स्टोरी लाइन, and of course very nice music. I know there was some kya kehte controversy thi in reference to the I guess the hunting shooting that they did. Aapko to pata hi hoga Jodhpur mein is film ki production hui thi, and apparently unhone wahan jaakar kuch kya kehte hain hunting ke liye gaye the, kuch shooting ho gayi thi endangered ब्लैक बक की, तो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन आई गेस आर ऑल गॉट सॉर्टेड आउट। एनीवे वो हमारी बातचीत चलती रहेगी, अब आपको लेकर चलते हैं सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 1999 के गाने की तरफ। एनी गेसेस? बस इतना जरूर कहूंगी कि नवरात्रि का सीजन है, सो दिस इज आई बिलीव द परफेक्ट सॉन्ग। Wishing you all a very good evening. This is Amreen Hasnat. Thank you so much for tuning in.

धम धम ढोल बजा। वाह जी वाह, क्या ढोल बजा इस गाने में। आवाजें थी, आई बिलीव दैट वाज कविता कृष्णमूर्ति एंड विनोद राठौर। जी हाँ, उनकी आवाज थी और फिल्म का नाम हम दिल दे चुके सनम। इफ यू गाइस रिकॉल, दिस मूवी वाज द सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 1999, स्टारिंग द वेरी ब्यूटिफुल ऐश्वर्या राय एंड सलमान खान। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन फिल्मों को साथ साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दी जाती थी, तो इस फिल्म का नाम था हम दिल दे चुके सनम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये अब एज सच ट्रांसलेशन तो नहीं थी इस वर्ड्स की, लेकिन एक वो क्या होता है ना, टैगलाइन टाइप्स दी गई थी इस फिल्म को। इसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय के साथ साथ अजय देवगन भी थे। इस गाने की खासियत मेरे ओपिनियन में ये थी कि इसमें गाने सारे बेहतरीन थे, एक से बढ़कर एक। गुजरात और राजस्थान में इसे पिक्चराइज किया गया था एज वेल एज इन बुदापेस्ट हंगरी। सो और फिर कुछ एंड दे यूज्ड दैट एरिया, मतलब कहानी में उन्होंने दिखाया था कि इटली है, पर वो एक्चुअली इटली था नहीं। और ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी इट गॉट प्रीमियर्ड। So that is the story behind it. It definitely made a lot of money. तकरीबन 16 करोड़ रुपए लगे थे इस फिल्म को बनाने के लिए, but it brought in 51.38 करोड़ रुपीज। So yes, a blockbuster, a commercial blockbuster for 1999. Non-stop 90s mein aap tamam sunne walon ka swagat hai. I also want to do a quick shout out to attorney Omar Khwaja, jo un tamam logon ki help karte hain who are involved in an accident. Now how can he help you? Well, if you're in any kind of an accident or a slip and fall injury incident, he will fight for you. Kyunki kya hota hai na, insurance companies hoti hai, unka kaam hota hai paise bachana, lekin attorney Omar Khwaja ko pata hai ki kaise उन कंपनी से कॉम्पनसेशन आपको दिलानी है। एंड डोंट वरी अबाउट द फीस, दे डोंट चार्ज यू एनीथिंग अंटिल यू विन द केस, सो डोंट लेट दैट गेट यू डाउन, गेट द राइट गाय ऑन योर साइड। 4693005046 और विजिट attorneyomar.com। यू आर लिसनिंग टू नॉन स्टॉप 90s, जिसमें आज फीचर किए जा रहे हैं 1999 में रिलीज होने वाले फिल्मी गीत।

मैं अक्सर ये गाना गुनगुनाती हूँ. अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना फ्रॉम द फिल्म ताल, विच वॉज पिक्चराइज ऑन अक्षय खन्ना एज वेल एज ऐश्वर्या राय. इस फिल्म में अनिल कपूर भी थे एंड अमरीश पुरी और अलोक नाथ भी. 99 में रिलीज होने वाली ये म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म सुभाष घाई साहब ने प्रोड्यूस की थी और सभी ने इसे बहुत पसंद किया. इसे बनाने में खर्च हुए तकरीबन 15 करोड़ एंड इट ब्रॉट इन 51+ crores. एंड कहानी अब मैं क्या सुनाऊं, पर इतना ज़रूर बताऊंगी कि 45th फिल्म फेयर अवार्ड में ताल फिल्म को तकरीबन 12 नॉमिनेशंस मिली थी. जीते उन्होंने सिर्फ 6 अवार्ड. एक तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अनिल कपूर को मिला था, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर रहमान साहब को और बेस्ट लिरिसिस्ट आनंद बख्शी साहब को फॉर इश्क बिना क्या जीना यारो. ऑफकोर्स मैंने तो टाइटल ट्रैक प्ले किया. बहरहाल होप यू गाइज एंजॉय दैट सॉन्ग. इट इज़ नाउ 3:24 ऑन दिस 27th of September. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात और आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप 90s ऑन आर शो दिल से, जिसमें आज 1999 की ब्लॉकबस्टर यानी कि टॉप 10 फिल्मों के गाने हम आपको सुनवा रहे हैं.

चुनरी चुनरी टेकन फ्रॉम द फिल्म बीवी नंबर वन, जिसमें बीवी नंबर वन सुष्मिता सेन नहीं बल्कि आई बिलीव करिश्मा कपूर थी, साथ में थे सलमान खान। जी हाँ, बीवी नंबर वन डेविड धवन की बनाई हुई एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इनफैक्ट इट वॉज अ रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म। अब तमिल फिल्म का नाम मैं लूंगी तो कहीं मैं उसका प्रोनाउंसिएशन खराब ना कर दूं। इट वॉज टाइटल्ड साथी लीलावती एंड इट केम आउट बैक इन 1995। वैसे इस फिल्म में करिश्मा कपूर और तब्बू के अलावा सुष्मिता सेन और अनिल कपूर भी थे। अमिताभ बच्चन और सैफ अली खान ने भी स्पेशल अपीयरेंस दी थी एंड इस फिल्म को बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले। आई थिंक यूजुअली द मैसेस डू लाइक टू वॉच क्या कहते हैं फन मूवीज, यू नो, ऐसी मूवी जिसमें मस्ती हो, धमाल हो, दैट इज मोर फन फॉर पीपल, राइट? वुडंट यू एग्री? खैर एनीवे, हमें तो पसंद आया ये गाना एंड वी आर गोना गो अहेड एंड कंटिन्यू आवर नॉनस्टॉप 90s एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक। जो अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं ये काजोल और अनिल कपूर पर पिक्चराइज किया गया है फ्रॉम द फिफ्थ हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 1999, हम आपके दिल में रहते हैं कि नहीं।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gro Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gro Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: वी नीड टू टॉक।
8: अब क्या हुआ?
7: नथिंग, इट्स नॉट यू।
8: ओह नो,
7: इट्स द डिस्टेंस।
8: डिस्टेंस? वी लिव 10 मिनट्स अपार्ट।
7: अरे इट्स एक्चुअली नॉट यू, इट्स द ड्राइविंग ऑल द वे फॉर माय सैल्स हॉट चिकन।
9: इरविंग, दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऑफिशियली ओवर। सैल्स हॉट चिकन इज नाउ इन इरविंग। योर क्रिस्पी चिकन, लोडेड सैंडविचेस एंड बोल्ड सैल्स फ्लेवर्स जस्ट गॉट अ होल लॉट क्लोजर। सैल्स हॉट चिकन इरविंग, सेम ऑब्सेशन, लेस डिस्टेंस।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
13: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
7: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
13: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
14: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
9: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
14: Barista House, richness of biryani bliss.
15: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
13: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो। मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
16: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
13: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
16: और एंटरटेनमेंट,
13: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
16: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
13: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
17: बिंदास बोलो। बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
7: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशा रेडियो पर।
18: Welcome, welcome, welcome. Welcome back to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. Main hoon aapki host, aapki dost Samreen Hasnat, and I'll be entertaining you till 6 PM. Aaj ke hamare is show mein segment ka naam hai Nonstop 90s. Woh isliye ki hum aapko 90s ke gaane sunwa rahe hain. Pretty much every Sunday afternoon we do cover 1 year. And 1990 se shuruaat ki thi aur hum 1999 tak pahunch chuke hain. And we've been playing all different songs from the movies which came out in 1999. And of course these are the top 10 movies of 1999. Now before I move on to the next song or tell you about the movie jiska gana humne abhi play kiya tha, I want to tell you about Texas Primary Care. Well, you see, Texas Primary Care has been serving our community for over 13 years now. Aur ab ek brand new location kholi hai unhone Frisco mein. It's called the Lenoxi Medical. Now what is special about this is this is everything under one roof. That's right. We've got primary care, urgent care, in-house lab testing, x-ray scans, cardiac diagnostics, and med spa services. Now, this was founded by Dr. Mandeep Acharya. Or 7 days a week, they're open 8 to 8, as in 8 a.m. to 8 p.m. So you can walk in anytime. You don't even have to make an appointment. Now, that's a great deal. So remember the name. That's Lenoxi Medical. All right, now back to Nonstop 90s. तो जो गाना हमने आपको कमर्शियल ब्रेक से पहले सुनाया था, that was the title track from the movie हम आपके दिल में रहते हैं। I believe कुमार सानू की आवाज थी, साथ में थी कविता कृष्णमूर्ति। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 6 करोड़ की लागत आई and it made 36 करोड़, as in 36, over 36 करोड़। बहुत सारी नॉमिनेशन मिली थी इस फिल्म को, however it didn't really win too many awards, but most of the picturization happened in Switzerland. Now, how cool is that? Sometimes I wish I'd want to be in the movies just so that I could travel and go to all these different beautiful locations, but I'm sure it's still work, you know? Aur ek aur baat bhi aapko batau, interesting is film ke baare mein. This was actually a Telugu movie remake. Jo Telugu movie thi, uska naam tha Pavitra Bandham. जो कि 1996 में रिलीज हुई थी एंड इट एक्चुअली डिड वेरी वेल। सो यही देखते हुए आई बिलीव प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सोचा कि इसका एक हिंदी वर्जन भी बनाना चाहिए, तो उन्होंने बना दिया एंड दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज पीपल लव्ड इट। काजल एंड अनिल कपूर एज वेल एज लेट्स सी हु एल्स वाज इन दिस मूवी, आई थिंक या काजल एंड अजय देव, काजल एंड सॉरी अनिल कपूर वर द मेन लीड इन दिस मूवी। शक्ति कपूर अनुपम खेर का भी इम्पोर्टेंट रोल था इस मूवी में। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू ऑन टू द नेक्स्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ 1999।

अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे मन, फिल्म से लिया गया ये गाना, जो कि मनीषा कुराला और आमिर खान पर पिक्चराइज किया गया था। इस फिल्म में इन दोनों के अलावा अनिल कपूर, शर्मिला टैगोर, नीरज वोरा और रानी मुखर्जी ने भी रोल अदा किया था। एंड दिस वाज एक्चुअली द सेकंड टाइम दे कोलैबोरेटेड एज इन आमिर खान एंड मनीषा कुराला। इससे पहले 1995 में उन्होंने एक मूवी की थी जो बहुत पसंद की गई थी, एंड दैट वॉज अकेले हम अकेले तुम। नाउ इंटरेस्टिंग बात मन मूवी की ये है दैट दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ 1957 अमेरिकन मूवी व्हिच वाज टाइटल्ड एन अफेयर टू रिमेम्बर। वैसे तो मन फिल्म को बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले और इसके म्यूजिक को भी बहुत पसंद किया गया, लेकिन देयर वाज सम कंट्रोवर्सी इन रेफरेंस टू द फैक्ट के कुछ गाने प्लेजराइज किए गए थे, यानी कि कॉपी किए गए थे अलग अलग धुनों की। एंड आई नो वन ऑफ देम वॉज नशा, ये प्यार का नशा है, वो तो मुझे याद है बिकॉज वो एक इटालियन गाने की कॉपी थी। ऑलराइट, तो ये तो था जनाब मन फिल्म का गाना। अब आइए चलते हैं अगले पायदान की तरफ, देखें कि सातवें नंबर पर कौन सी फिल्म थी 1999 में, एंड दैट वॉज नन अदर देन आमिर खान्स फिल्म सरफरोश।

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म सरफरोश। इस दीवाने लड़के को, दीवाना लड़का इसमें था आमिर खान और लड़की सोनाली बेंद्रे। ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी। इसे लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया जॉन मैथ्यू मथन ने। और ये फिल्म सच्चे यू नो एज इन ट्रू इवेंट बेस्ड कहानी थी। इट वॉज इन रेफरेंस टू स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो 1990s में इंडिया में हुआ था। और कहानी थी एक IPS ऑफिसर की जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का खात्मा करना चाहता था। ये फिल्म कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, वो बस उससे पहले पहले ही रिलीज हुई थी। सो इट एक्चुअली यू नो वाज रियली लव्ड बाय पीपल एंड इट बिकेम अ कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म एट द बॉक्स ऑफिस। और लोगों ने बहुत पसंद किया। इनफैक्ट इट वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। बाद में इस फिल्म को कन्नडा और तेलुगू में भी बनाया गया और ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का भी हिस्सा बनी। ऑलराइट, अब चलते हैं हम अगली फिल्म के गाने की तरफ। नाउ दैट इज गोइंग टू बी द 8th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 1999।

हम तो दीवाने हुए यार, सुन रहे थे बादशाह फिल्म से लिया गया ये गाना, बादशाह यानी के एम्परर। ऑलराइट, सो ये एक क्राइम कॉमेडी फिल्म थी जो अब्बास मस्तान ने बनाई थी। इस फिल्म के मेन अदाकार थे शाहरुख खान और ट्विंकल खन्ना, साथ में अमरीश पुरी, राखी गुलजार, जॉनी लीवर और रजाक खान भी थे। इस फिल्म में गो शाहरुख खान को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल नॉमिनेट तो किया, लेकिन वो विन नहीं कर सके। ये फिल्म जो थी एक 1995 में एक अमेरिकन फिल्म थी, निक ऑफ टाइम, सो इट वाज काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट। खैर, आइदर वे दिस वाज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स ऑफ 1999, इसीलिए हमारे आज के इस सेगमेंट का हिस्सा बना ये गाना। और आइए कुछ आप लोगों का हाल चाल तो मैंने पूछा नहीं, अपना हाल बता देती हूँ। मैं खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत नेक मतलूब है। और कुछ मौसम का हाल भी बता दें। 90 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज़ अ करंट टेम्परेचर, टुडेज़ हाई वाज 93, लो ऑफ 74। कई कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, बादल ही रहेंगे। एंड इट्स नॉट बैड एट ऑल एक्चुअली। टुमारो वी आर एक्सपेक्टिंग high of 88 and a low of 72 degrees, and there is also a forecast for rain, so watch out there. You're listening to Nonstop 90s, and today we're showcasing songs from the hit movies of 1999.

प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, सो ट्रू सो एप्ट, यही तो सब कहते हैं, लेकिन फिर भी जब किसी को होना होता है प्यार हो जाता है, एंड देन दैट्स द एंड ऑफ दैट. ऑलराइट, दिस सॉन्ग टेकन फ्रॉम द फिल्म कच्चे धागे व्हिच केम आउट इन 1999, द नाइन्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ दैट ईयर. मिलन नुथरिया ने बनाई थी ये फिल्म, जिसमें थे अजय देवगन, सैफ अली खान, मनीषा कुराला एज वेल एज नम्रता शिरोडकर. ये फिल्म थी एक आई गेस स्मगलर के बारे में, जो कि सामान राजस्थान से पाकिस्तान बॉर्डर तक आई गेस क्रॉस करवाते थे. फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग राजस्थान में हुई थी, पर कुछ शूटिंग स्विट्ज़रलैंड में भी हुई थी. दैट वाज कच्चे धागे. होप यू एंजॉय दैट सॉन्ग. आवाज़ें थी आई बिलीव कुमार सानू एंड अलका याग्निक की. अब आइए चलते हैं 10th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म के गाने की ओर.

स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात. आई बी विथ यू टिल 6 PM. इट इज 4:05 ऑन दिस सुपर संडे आफ्टरनून. और बारी है हमारे शब्द सेगमेंट की. क्या है शब्द सेगमेंट? वेल, शब्द सेगमेंट में हम सेलेक्ट करते हैं कोई एक वर्ड, कोई एक लफ्ज और उसी को लेकर चलते हैं. पूरे एक घंटे सुनाते हैं आपको गाने, कुछ नए कुछ पुराने. एंड द वर्ड इज ऑलवेज विद इन द फर्स्ट टू लाइन्स. सो आज भी इनाम के हकदार होंगे आप अगर आप गेस कर सकें कि आज का वर्ड क्या है. बट यू ओनली गेट दिस वन चांस, एज इन ये पहला गाना सुनकर आप गेस करने की कोशिश कीजिए.

सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल कॉलिंग एंड सजेस्टिंग के वर्ड है हुस्न, एंड दैट्स अ ग्रेट यू नो थॉट एंड अ ग्रेट सजेशन, लेकिन वर्ड हुस्न नहीं है. पर आप दोबारा कॉल करके कोई और वर्ड बता सकते हैं. रिमेंबर द वर्ड इज विद इन द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द सॉन्ग.

जहाँ लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना, जो कि फिल्म इंतकाम से लिया गया था, 1969 में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म के गाने को हेलन पर पिक्चराइज किया गया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रियंका, बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। आज का हमारा शब्द, हमारा वर्ड, हमारा लफ्ज है जान। अगर आपने सुना हो गाने के पहले तीन बोल ही यही थे, आ जाने जान। सो जान इज द वर्ड टुडे। सो आज जितने भी गाने आप इस घंटे में सुनेंगे, दे आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू दैट वर्ड। और उन्होंने जीता है $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन, योर फेवरेट पिज्जा डेस्टिनेशन, जहां आपको हर तरह के मजेदार पिज्जाज मिलेंगे, एवरीथिंग फ्रॉम देसी स्टाइल टू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जाज। और सिर्फ पिज्जा ही नहीं, पास्ता, सैंडविचेस, विंग्स एंड मोर, यू विल फाइंड इट एट फन पिज्जा किचन। आइए सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं 70s के इस गाने की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं, वी मूव फ्रॉम डेकेड टू डेकेड, 60s के बाद बारी है 70s की।

जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पर पिक्चराइज किया गया ये गाना, आई वुड से इंटरनेशनली वर्ल्ड फेमस एंड यू नो ऑल टाइम लव्ड मूवी शोले से लिया गया था, एंड इट बिकेम पार्ट ऑफ आवर शब्द सेगमेंट, क्योंकि आज का वर्ड है जान। सो जितने भी गाने आप सुनेंगे, जान तो होगी।

नीतू सिंह और जितेंद्र पर पिक्चराइज किया गया ये गाना सुन रहे थे हम किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज में. एंड इट केम आउट लाइक आई सेड इन 1979 एंड द नेम ऑफ द मूवी वाज जानी दुश्मन.

1980 में रिलीज होने वाली फिल्म शान से लिया गया ये गाना किशोर कुमार और रफ़ी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आप। ये अमिताभ बच्चन और शशि कपूर पर पिक्चराइज किया गया था। यू हैव जस्ट ट्यून्ड इन, ये प्रोग्राम दिल से, मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त अमरीन हसनात एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय AG FinTechs, one of the fastest growing tax firms in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. Call kar sakte hain aap 469-942-9888 or visit agfintechs.com. ऑलराइट, तो जनाब अब हम चलते हैं अगले गाने की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं शब्द सेगमेंट की खासियत ये है कि हर एरा हर डेकेड का गाना हम आपको सुनवाते हैं और हर स्टाइल का गाना, बिकॉज फोकस होता है सिर्फ उस वर्ड उस लफ्ज उस शब्द पर। तो एक बड़ा ही अच्छा गाना है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी जो शायद आम तौर पर आपको रेडियो पर सुनने को ना मिले। सो हियर यू गो, दिस वन इज़ टेकन फ्रॉम द फिल्म उमराव जान।

दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। आशा भोसले जी की आवाज में सुन रहे थे आप उमराव जान फिल्म का ये गाना, 1981 में रिलीज हुई थी। अच्छा, हमारे एक लिस्टर अकरम साहब ने फरमाइश की 1970s के गाने की, आई शुड प्ले दैट सॉन्ग टू बिकॉज इट वाज जस्ट सच अ ग्रेट सॉन्ग, लेकिन चूंकि मिस हो गया तो इसलिए वैसे तो हम इस सेगमेंट में रिक्वेस्ट नहीं लेते, बट दिस इज अ ग्रेट सॉन्ग इन totally matches our theme as in Jaan ka word, so इसीलिए हम इसे शामिल कर देंगे। So here you go, I hope you guys don't mind, we're going backwards into 70s just for this one song.

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म जवानी दीवानी। गाना रणधीर कपूर और जया बच्चन पर पिक्चराइज किया गया था। एंड नाउ बैक टू द 80s। संजय दत्त और फराह पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म मोहब्बत के दुश्मन से लिया गया है।

0: एक और लड्डू ले लो।
1: थोड़ी और बिरयानी।
2: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
3: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
4: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
2: वी नीड टू टॉक।
5: अब क्या हुआ?
2: Nothing. It's not you.
5: Oh no.
2: It's the distance.
5: Distance? We live 10 minutes apart.
2: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
6: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
7: Ye tara wo tara har tara.
6: Arey, arey, arey. डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
8: You.
9: Did someone say $100 credit for pizza? If you have an Amex Platinum card, you may be eligible for a $100 credit at Fun Pizza Kitchen. Treat yourself to cheesy favorites, special flavors, and mouth-watering toppings that'll have you coming back for another slice. Just visit the Fun Pizza Kitchen Frisco location before September 30th. For eligibility and details, call the Frisco location or simply walk in. Fun Pizza Kitchen. Bring your appetite. We'll bring the flavor. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
10: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezaar कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाउन कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।

लता मंगेशकर जी का गाया हुआ ये गाना फिल्म चांदनी से लिया गया है और ये पिक्चराइज किया गया था श्रीदेवी और ऋषि कपूर पर। खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। I'm your host, Amreen Hasnat, and I'll be with you till 6 p.m. It is 36 minutes past 4, aur pesh kiya ja raha hai aapke liye shabd ka segment, jisme ek word, ek lafz, ek shabd ko lekar hum aapko sunwate hain beshumar gaane, naye aur purane. Shuruaat ki jati hai purane gaanon se, aisa aisa aage ki taraf badhte hain aur sunwate hain aapko naye gaane. So, ye tha hamara 80s ka aakhri gaana, aur ab aaiye, chalte hain 90s ki taraf.

taken from the film जान, ये गाना सुन रहे थे आप मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाज में। गाना अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना पर पिक्चराइज किया गया था। सो फार आई होप कि आप हमारी सॉन्ग सिलेक्शन एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शब्द सेगमेंट कि इसमें आपको हर टाइम फ्रेम के और हर स्टाइल के, हर अंदाज के गाने सुनने को मिलते हैं। एवरीथिंग फ्रॉम यू नो डांस सॉन्ग्स टू सैड सॉन्ग्स टू songs in between. I उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे ये गाने।

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

तेरा मिलना पल दो पल का मेरी जान लेना डाले लेना जाए. वेल दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एल्बम्स बाय सोनू निगम. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. आइए अब चलते हैं अगले गाने की तरफ. वी आर गोना कंटिन्यू आवर थीम ऑफ जान.

तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। बरसात फिल्म का ये गाना कुमार सानू की आवाज में सुन रहे थे आप। ये बॉबी देओल और आई बिलीव दैट वाज ट्विंकल खन्ना जिन पर ये पिक्चराइज किया गया था। इट्स 46 मिनट्स पास्ट 4। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। दिस इज अमरीन हसनात। ये है शब्द का सेगमेंट। आज का वर्ड, आज का शब्द है जान।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना जो सलमान खान पर पिक्चराइज किया गया था, एज वेल एज स्नेहा, एंड दिस वाज फ्रॉम द मूवी लकी. इट्स 49 मिनट्स पास्ट 4. लेट्स कीप दिस सेगमेंट गोइंग, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग, टाइटल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म जब तक है जान.

जावेद अली की आवाज में सुन रहे थे आप जब तक है जहाँ फिल्म का टाइटल ट्रैक. एंड दोज ऑफ यू हु हैव हर्ड द एड अबाउट ऑसम इवेंट्स, मैंने सोचा पर्सनली भी आपको बता दूं कि मैं क्या करती हूँ. सो आई हैव ए फुल सर्विस इवेंट प्लानिंग कंपनी. नाउ दैट डजंट मीन कि कोई 10,000 की कॉन्सर्ट होगी तो ही मैं हेल्प करूंगी. आई डू ऑल काइंड ऑफ इवेंट्स, एवरी साइज, यू नो, इट रियली डजंट मैटर. चाहे 50 लोगों की एक छोटी सी पार्टी हो या 5,000 लोगों का इवेंट हो, आई कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ इवेंट. और फर्दर मोर, अगर आप अपने इवेंट की कुछ प्लानिंग या कुछ मैनेजमेंट खुद से कर चुके हैं पहले, दैट्स ओके टू. आई कैन गाइड यू एंड हेल्प यू विद द रेस्ट ऑफ इट, और हेल्प यू ऑन द डे ऑफ द इवेंट. सो इवन इफ यू हैव डन ऑल द बुकिंग योर सेल्फ, मतलब सब वेंडर्स को आपने खुद बुक कर लिया है, फिर भी जिस दिन इवेंट होता है उस दिन आप किस किस से बात करेंगे, किस किस चीज़ को मैनेज करेंगे. सो आई कैन बी देयर टू रिप्रेजेंट यू एंड ऑन योर बिहाफ कोऑर्डिनेट एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन एंड मेक श्योर कि आपका इवेंट सक्सेसफुल रहे. इसके अलावा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल एमसी, आई कैन हेल्प यू विद दैट इज वेल. आप मुझे कॉल कर सकते हैं 214-725-7466, दैट्स 214-725-7466, और इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं. वी कैन डिस्कस योर अपकमिंग इवेंट. अब वो इवेंट इस साल है या अगले साल है या जब भी है, जो भी है आपके इवेंट में करना, आई बी हैप्पी टू असिस्ट. इट वुड बी माई अटमोस्ट प्लेजर. एंड हमारी कंपनी का नाम है ऑसम इवेंट्स. सो अगर आपने अपने इवेंट को ऑसम बनाना है तो फिर याद रखिए एक ही नाम, ऑसम इवेंट्स.

लेकिन फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना. आइए लेकर चलते हैं आपको सेगमेंट के आखिरी गाने की तरफ. होप यू एंजॉय टुडेज शब्द सेगमेंट, जिसमें आज के सभी गाने वर्ड जान से रिलेटेड थे.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Term restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: हेलो वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
11: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
10: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
9: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
12: Hello Texas Parivar, kya aapko pata hai there is a first time home buyer program under Fannie and Freddie for confirming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: बेटा 95% आए?
18: हाँ मम्मी।
17: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
19: मेरा?
17: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
19: वो
20: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
21: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स, मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
22: बिंदास बोलो,
18: बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
19: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना, सलमान खान की सुपरहिट फिल्म से लिया गया था मैंने प्यार किया, जिसमें वो थे भाग्यश्री के साथ। इफ यू रिमेम्बर दिस वाज इवन दो 1988 में उन्होंने अपने करियर का आगाज किया विद द मूवी फलक एंड बीवी हो तो ऐसी, जिस एक फिल्म ने उन्हें शोहरत की ऊंचाई पर पहुंचा दिया, दैट वाज मैंने प्यार किया। एंड आज हमारे खान स्पेशल में हमने चूज किया है सलमान खान को, तो उन्हीं की हिट फिल्मों के गाने हम आपको सुनवाएंगे। नाउ सिंस ही हैज डन सो मेनी मूवीज एंड ही हैज गॉट सच ग्रेट सॉन्ग्स दैट आर पार्ट ऑफ हिज मूवीज, आई डोंट थिंक कि ये एक संडे में हम मुकम्मल कर सकेंगे, इसीलिए वी आर गोना गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड एंड वी डिड विद दिस मूवी। और अब आइए लेकर चलते हैं उनकी फिल्म बागी के इस गाने की तरफ।

सलमान खान और नगमा पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म बागी से लिया गया था। आज के खान स्पेशल में हम सुनवा रहे हैं आपको सलमान खान की फिल्मों के सुपरहिट गाने।

आयशा झुलका और सलमान खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना सुन रहे थे आप अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज में। इट इज 17 minutes past 5 ऑन दिस सुपर संडे इवनिंग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। This part of our show is brought to you by My Time Equity. Led by CPA Sudhir Pai, My Time Equity offers personalized strategies for portfolio management, real estate, alternative investments and retirement planning. You can reach them by calling 469-702-1272 or visit mytimeequity.com. आइए खान स्पेशल को कंटिन्यू रखते हैं और लेकर चलते हैं आपको साजन फिल्म के इस गाने की तरफ।

this was a super hit song back in the days. I think अगर आप आज की generation को इस गाने की video दिखाएंगे तो वो हंस हंस कर लोट पोट हो जाएंगे, ये मेरी guarantee है. Thank you for tuning in to 104.9 FM. You are listening to the Khan Special और आज हम आपको सुनवा रहे हैं सलमान खान की हिट फिल्मों के गाने.

What a beautiful song taken from the film Love. रेवती और सलमान खान पर पिक्चराइज किया गया था. आवाज़ें आई बिलीव वर एसपी बाला सुब्रमण्यम एंड आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर के फीमेल सिंगर कौन थी. एनीवे लेट्स गो अहेड एंड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग. माधुरी दीक्षित और सलमान खान पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना फॉर द फिल्म दिल तेरा आशिक़.

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना जो माधुरी दीक्षित और सलमान खान पर पिक्चराइज किया गया था। एंड यस, इन दोनों की जोड़ी हमेशा हर फिल्म में सुपरहिट ही रही है, इंक्लूडिंग दिस वन फ्रॉम द मूवी हम आपके हैं कौन।

करिश्मा कपूर और सलमान खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना 90s की सुपरहिट फिल्म अंदाज अपना अपना से लिया गया था। स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का। यू आर ट्यून्ड इन टू दिल से। आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात एंड दिस इज द खान स्पेशल, जिसमें आज हम आपको सलमान खान के हिट फिल्मी गाने सुनवा रहे हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड कीप इट मूविंग। जो अगला गाना आपको सुनवाने जा रही हूँ वो फिल्म खामोशी से लिया गया है।

उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना जो सलमान खान और मनीषा कोराला पर पिक्चराइज किया गया था। इट्स 40 मिनट्स पास्ट 5 एंड आई हैव एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर बिजनेस ओनर्स इन टेक्सास। नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन, Tara Commercial Energy is the company you can trust. They have been serving our community since 2002 with competitive rates, reliable service, and of course, customized packages. Now you can visit taraenergy.com or you can call 844-428-2808. आइए खान स्पेशल के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं, लेकर चलते हैं आपको जुड़वां फिल्म के इस हिट गाने की तरफ।

no se para. Tan tan tan tan tan tan tara. चलती है कानों से पारा, खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चल हो

0: देख मुझे दोबारा।
1: अभिजीत और पूर्णिमा की आवाज में सुन रहे थे आप सलमान खान की फिल्म जुड़वां से लिया गया ये गाना। होप यू गाइस एंजॉयड इट। आइए चलते हैं इस अगले गाने की तरफ। आई थिंक दिस ट्रूली मेड सलमान खान ए हार्ट थ्रॉब अमंगस्ट द लेडीज। एवरीवन वेंट गूगू गागा ओवर दिस हैंडसम हंक।

दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

Taken from the film जब प्यार किसी से होता है, सलमान खान पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना. 91 degrees here in McKinney, Texas. Today's high 94 and a low of 74 degrees Fahrenheit. Hope you guys are having a great evening.

और अब लेकर चलते हैं आपको इस अगले गाने की तरफ। गो इस फिल्म में सलमान खान का कोई बहुत इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन फिर भी इस गाने में सलमान खान वॉज द लीड एंड ही डिड हैव आई गेस उनके कैरेक्टर की जगह जरूर थी, पर एज फार एज स्क्रीन टाइम इज कंसर्न ही वॉज ओनली देयर इन दिस वन सॉन्ग आई बिलीव।

इसी आखिरी गाने के साथ रैप अप करते हैं हम आज का अपना ये शो दिल से. आई होप आपने एंजॉय किया. आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सैटरडे को 3:30 से 6 बजे के दरमियान और फिर संडे को 3 से 6 के बीच में. एंड वी विल कंटिन्यू द खान स्पेशल नेक्स्ट संडे बिटवीन 5 and 6 PM बिकॉज एज वी नो सलमान खान की इतनी बेशुमार फिल्में हैं और इतने अच्छे अच्छे गाने हैं. इट वुड बी अनफेयर टू नॉट शोकेस ऑल ऑफ देम. सो आई होप टिल देन यू गाइस डू वेल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ईच अदर. आपसे मुलाकात होगी इसी एयरवेज पे यानी कि 104.9 FM नेक्स्ट Saturday between 3:30 and 6 p.m. This is Amreen Hasnat signing off for Dil Se.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
7: अरे सारे तो सेम है।
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
7: ओ हाँ, ये तो अलग है।
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
12: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
11: कैसे?
12: पेज 3 ईटरी?
11: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
12: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
11: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं।
13: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
14: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338, 4697343338। माई फैमिली होम लोन .com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
17: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
18: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
17: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
18: वो पता नहीं।
8: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, powered by real foot traffic attribution. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
17: Ab hui na smart marketing.
8: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers.
19: Smart Reach AI, a Fun Asia Network product. Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales, or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual, and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
20: This is Ali Zafar, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी, आपकी अपनी अपूर्वा। स्वागत करते हुए इस खूबसूरत सी संडे की शाम में आप सभी का। दोस्तों इस खूबसूरत सी संडे शाम में साथ रहेगा आपका और मेरा 6 से 8। इस 2 घंटे के खूबसूरत से सफर में जुड़े रहते हैं अभी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फोगी, गर्मी वाली। और जी हाँ, आज जैसे बहुत सुहानी कैसे भी हो, हमें तो अच्छी लगती है, बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के।
1: अच्छा ये देखो क्या आ रहा है, ये देखो।

0: डेविड, आपकी बेटी की किडनीज बर्थ से ही बहुत कमजोर है।
1: ऐसे ही खूबसूरत आवाज कल आप सबने सुनी। जी हाँ, डालस वासियों, मैं बात कर रही हूँ सोनू निगम की। ओ माय गॉड, क्या कॉन्सर्ट था उनका, और क्या आवाज़ थी, क्या गाने थे, क्या अंदाज था, क्या स्टाइल था और क्या एनर्जी थी। भाई मैं जितना भी उनके बारे में बात करूँ, जितना भी उनके गानों के बारे में बात करूँ, जितना भी उनके कल के कॉन्सर्ट के बारे में बात करूँ, मेरी तो मेरे तो जहन से वो पूरा दृश्य जो बोलते हैं ना उनके कॉन्सर्ट का, वो जा नहीं रहा है दोस्तों। कंटिन्यूस फ्लैशेस आ रहे हैं मेरी आंखों के सामने। इतना अमेजिंग शो किया है सोनू निगम ने कि क्या ही कहे। अगर आप फॉर्चुनेट हुए और आपको ये शो सुनने का मौका मिला है तो बहुत अच्छा हुआ है आपकी जिंदगी में आपके साथ। सोनू निगम हैज़ बिन वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड द फेवरेट सिंगर अमंगस्ट ऑल द 90s किड्स। जी हाँ, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द 90s किड्स, और जब जो भी गाने सुने हैं, जो भी गानों को फील किया है, वो सारे सोनू निगम के गानों को ही हमने सबसे पहले सुनने की शुरुआत की थी, और उनके गानों ने ही हमें गानों को पहचानने का और गानों को समझने का मतलब समझाया है। और कल उसी सिंगिंग गॉड को जब हमने सामने देखा, जब स्पेशली मैंने सामने देखा, आई वॉज लाइक स्पेल बाउंड। टोटली स्पीचलेस एक्सपीरियंस था। बहुत ही मैजिकल गाते हैं, 55 ईयर्स के हैं फिर भी जो एनर्जी है, जो ग्लो है, इतने हैंडसम, इतने क्यूट दिख रहे थे पूरे के पूरे स्क्रीन के ऊपर, और उनकी स्माइल, उनका अंदाज और उनका, ओ माई गॉड, everything was just परफेक्ट, चेरी ऑन द केक। तो अगर आपको ये मौका इस बार नहीं मिला है तो ऐसे कई मौके आपको अगले बार भी मिलेंगे। तो प्लीज़, इट इज़ माई आर्डेंट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द डैलस पीपल टू गो एंड वॉच सोनू निगम लाइव, क्योंकि उनको लाइव गाते देखना और उनके पूरे तामझाम को, उनके पूरे ऑर्केस्ट्रा को, उनका सब कुछ इतना अमेजिंग था कि क्या ही कहे। श्रेया घोषाल को मैंने सुना है, बट आई वुड डेफिनेटली से दैट सोनू निगम वॉज एट पार द एक्सेलेंस। तो अगर आपको इन फ्यूचर ऐसा कभी मौका मिलता है कि आप सोनू निगम को लाइव इन कॉन्सर्ट देखें उनका, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। गो एंड ग्रैब दोज टिकट्स एज सून एज पॉसिबल एंड वॉच दैट सिंगिंग माइस्ट्रो लाइव। तो आज का मेरा जो शो है वो सोनू निगम पे ही डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि उस कल के मैजिक से मैं अभी तक उभरी नहीं हूँ। तो अगर आपका कोई सोनू निगम का फेवरेट गाना है जो यहाँ पे आपको चलाने की अगर आपको रिक्वेस्ट करना है, तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। स्टूडियो का नंबर 9722355555। दिस शो इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू ओनली एंड ओनली सोनू निगम।

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
1: क्या मतलब?
2: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
2: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
3: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: We need to talk.
5: अब क्या हुआ?
4: Nothing. It's not you.
5: Oh no.
4: It's the distance.
5: Distance? We live 10 minutes apart.
4: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
6: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
0: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
4: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
0: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद। प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस। नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर। डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सास।
6: हैप्पी आवर्स मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 3 PM to 7 PM।
0: बिरिस्ता हाउस, रिचनेस ऑफ बिरयानी ब्लिस।
11: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
12: जीनी,
0: हुकम मेरे आका।
12: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
0: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका। लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
12: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
0: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
12: और एंटरटेनमेंट,
0: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
12: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
0: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
13: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
14: The Dill of Dallas. Heart to Heart.

गुड इवनिंग दोस्तों एंड वेलकम बैक. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी. एवरी संडे की शाम 206 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ. जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए. आज का शो मैं डेडिकेट कर रही हूँ पूरा का पूरा सोनू निगम को. जी हाँ, क्योंकि कल के लाइव कॉन्सर्ट का जो नशा है वो अभी तक उतरा नहीं है. तो चलिए भाई, सोनू निगम के गानों को सुनते हैं, उनकी गानों को जीते हैं और एंजॉय करते हैं. अगर इन द मेन टाइम अगर आपको भी उनका कोई गाना सुनने की इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं. स्टूडियो का नंबर 9722355555.

beautiful voice sung by none other than Sonu Nigam. अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं दैट योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक. सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प फैमिलीज नेशन वाइड विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग और रीफाइनेंसिंग. यू कैन कॉल देम, द नंबर टू कॉल इज 9722455626 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज dreamhomemortgage.com. ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन.

अभी आपका लेकर चलती हूँ सोनू निगम के मेरे फेवरेट गाने की तरफ, जो कि उन्होंने गाया है लता मंगेशकर जी के साथ में, टेकन फ्रॉम द मूवी वीर जरा. एंजॉय दिस ट्रैक दोस्तों.

लवली सॉन्ग दोस्तों, लता मंगेशकर जी और सोनू निगम की आवाज में सुन रहे थे आप टेकन फ्रॉम द मूवी वीर ज़ारा। सोनू निगम पे शो डेडिकेटेड है आज हमारा, क्योंकि कल उन्होंने जो तहलका मचाया है डालस में उसको सेलिब्रेट करते हुए आज का पूरा शो डेडिकेट करती हूँ सोनू निगम को। अगले आवर में हम सोनू निगम के कुछ मस्ती भरे गाने सुनेंगे, तो अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट या गाना सुनने की इच्छा आकांक्षा मनोकामना है आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। स्टूडियो का नंबर 9722355555।

0: एक साल के अंदर अंदर उन्होंने दूसरा शो किया है डालस में, फिर भी हाउसफुल था उनका शो। ये ताकत होती है एक अच्छे सिंगर की और एक उम्दा सिंगर की। भाई क्या कमाल के आर्टिस्ट है, इसका तो अंदाजा कल ही हमको आ ही गया है। अभी 201 मिनट में ब्रेक आने वाला है। ब्रेक की तरफ जाने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, तो गौर से सुनिएगा। दैट इफ यू आर प्लानिंग अ वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग और एनी स्पेशल सेलिब्रेशन, बिफोर यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग अबाउट वेन्यूज, डिकॉर, केटरिंग एंड ऑल द लिटिल डिटेल्स, हियर इज वन नेम यू शुड नो, विच इज कॉल्ड वेनेसा इवेंट्स। They make planning simple by bringing everything together in one place, from venue selection and beautiful decor by signature events to photography, hospitality and delicious catering exclusively by the renowned Basera Grand. So you can focus on making memories while they take care of the rest. For more details, you can call Hari Basera today. The number to call is 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals.